आप सुन रहे हैं आपसे साक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर आपके अपने ब्रेकफास्ट शो को। अच्छा, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने सुबह सुबह सोचा हो कि आज तो मैं ऑफिस टाइम से 10 मिनट पहले पहुंचूंगा और ठीक उसी दिन आपको रास्ते में अपने गाड़ी को लेकर रोना पड़ा हो, भाई टायर पंचर हो गया हो, या फिर ऐसा हुआ हो कि चाबी ही कहीं गायब हो जाए। हम प्लान और कुछ करते हैं और लाइफ हमारे साथ गुगली खेल देती है और हमारा प्लान धरा का धरा रह जाता है। ऐसे में चिढ़ने की बजाय जोर से हंसिए और बोलिए इट हैपेंस, क्योंकि लाइफ का असली मजा इसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी में है। मूड को बिल्कुल लाइट रखिए और सुनते रहिए सताक्षी के साथ आपका सुपर हिट शो, और मैं प्ले करती हूँ एक सुपर हिट गाना आपके लिए।

किट हैपेंस में एक बार फिर से सताक्षी के साथ हैं आप रेडियो ब्रिस्पानी 1701 एम पर। और अब बात करते हैं जरा हमारी सेहत की। जी हाँ, हेल्थ है तो सब है। और भाई, जब मैं हेल्थ की बात करती हूँ तो मेरा मतलब फैंसी एवोकाडो टोस्ट, महंगे जिम सप्लीमेंट्स या फिर सुबह 4 बजे उठकर 10 किलोमीटर दौड़ना, इससे बिल्कुल भी नहीं होता है। आजकल सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स को देखकर हमें गिल्ट होने लगता है कि यार, मैं तो इतनी परफेक्ट लाइफस्टाइल जी ही नहीं पा रही हूँ, या मेरे लिए तो ये लाइफस्टाइल है ही नहीं। अरे भाई, वो बस 15 सेकंड की रील है, असलियत में सब नॉर्मल है। अगर आपने आज सुबह वर्कआउट मिस किया है और उसकी जगह एक एक्स्ट्रा पराठा या डोनट खा लिया है तो कोई पाप नहीं कर दिया। समटाइम इट हैपेंस। फिटनेस का मतलब खुद को सजा देना नहीं होता है। आज जिम नहीं जा पाए, कोई बात नहीं, शाम को पसंदीदा गाना लगाकर कमरे में ही 5 मिनट डांस कर लीजिएगा। बॉडी को मूव करिए, खुश रहिए और गिल्ट को टाटा बाय बाय कहिए। इम्पोर्टेंट ये है कि हमें अपनी बॉडी को वर्कआउट देना है। सुबह जिम नहीं जा पाए, शाम को दे लीजिए, है ना। और जिस तरह से आपका मन करे उस तरह से वर्कआउट कीजिए। जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा एक्सरसाइज ही करनी है या हमेशा 10 किलोमीटर दौड़ ही लगानी है। भाई, जितना बॉडी अलाउ करे उतना ही करना है। आइए फिलहाल एक और ट्रैक सुनिए मेरे साथ और एंजॉय करते रहिए इट हैपेंस। जी, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन 1701 AM।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

सो वेलकम बैक, इट हैपेंस में सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं कुछ बहुत ही प्यारी और खूबसूरत बातों को। भाई मेरा आपका साथ इस इट हैपेंस में बरकरार है, जारी है और आगे भी जारी रहेगा। वैसे कभी कभी हम बिना किसी वजह के ऐसा दिल करता है ना कि रो लें, या गुस्सा आए या लगे कि बस सब कुछ भारी हो रहा है, तो अपने जज्बातों को दबाइए नहीं, अपने इमोशंस को खुद के अंदर सप्रेस मत होने दीजिए। हम हमेशा पॉजिटिव दिखने के चक्कर में अपने असली इमोशंस को छुपा जाते हैं दोस्तों। उदास होना भी उतना ही नॉर्मल है जितना खुश होना, है ना। अपने किसी अच्छे दोस्त को कॉल लगाइए, दिल हल्का करिए, या बस एक अच्छी सी नींद ले लीजिए। कल एक नया दिन था, कल एक नया दिन होगा, आज एक नया दिन है, इसलिए बहुत सारे इमोशनल जो इम्बैलेंसेस है ना, उनके चक्कर में पढ़कर या उन्हें बार बार सोचकर आप उनमें खुद को और मत फंसाइए। खुद को नॉर्मल करिए और ये याद रखिए कि सिर्फ आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, सबके साथ होता है। इट ऑलवेज हैपन। एक और ट्रैक सताक्षी के साथ, इंजॉय कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। रेडियो प्रस्थानी सताक्षी के साथ हैं आप।

सताक्षी के साथ कुछ बहुत ही प्यारे और खूबसूरत ट्रैक्स को इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं रेडियो प्रिस्फानी 1701 AM पर। यू नो, हम हमेशा बड़ी खुशियों के इंतजार में बैठे रहते हैं कि जब गाड़ी खरीदेंगे तब पार्टी करेंगे, जब नया घर होगा तब खुशी मना लेंगे। लेकिन बड़ी खुशी तो जिंदगी में 2 या 3 बार ही आती है ना, बाकी दिन क्या करें? बाकी दिन इन छोटी छोटी खुशियों को, छोटी छोटी चीजों को ढूंढिए और उन्हें सेलिब्रेट कीजिए। जैसे रास्ते में कोई प्यारा सा डॉगी दिख गया, रेडियो पर आपका पसंदीदा पुराना गाना प्ले हो गया, या फिर चाय बिस्कुट का कॉम्बिनेशन आपके लिए परफेक्ट बन गया। ऐसे बहुत सारे फेजेस होते हैं जिनमें आप इन छोटी खुशियों को सेलिब्रेट कर सकते हैं, इन्हें ढूंढ सकते हैं और इन्हें इंजॉय भी कर सकते हैं, है ना? क्योंकि जिंदगी परफेक्ट होने में नहीं बल्कि इन खूबसूरत कमियों के साथ जीने में है। तो चलिए अब ज्यादा सोचिए नहीं और एंजॉय कीजिए ये अगला ट्रैक और सुनते रहिए मेरे साथ इट हैपेंस आपके अपने रेडियो प्रिस्फानी 1701 AM। बदले

हर रोज कुछ नया कुछ अधूरा सा होता है। हर रोज कुछ नया कुछ अधूरा सा होता है। यही अधूरी बातें ही तो जिंदगी का किस्सा पूरा करती हैं। यही अधूरी बातें ही तो जिंदगी का किस्सा पूरा करती हैं। तो शिकायतों को छोड़िए और मुस्कुरा कर गले लगाइए आज को। शिकायतों को छोड़िए और मुस्कुरा कर गले लगाइए आज को, क्योंकि जो आज है वही तो कल की याद बनता है। तो मुस्कुराइए, जिंदगी आपके साथ है। जिंदगी का एक और फेज, एक और दिन आपके साथ है। जिस तरह से कल का दिन गुजर गया है, उसी तरह से आप भी कल की याद मिटा दीजिए और आज को एक्सेप्ट कीजिए। एक और ट्रैक सताक्षी के साथ, और सुनते रहिए ठापन्स आपके अपने रेडियो प्रस्वानी पर।

सब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि मुझे लेनी होगी आपसे विदा। ये सफर आपकी मौजूदगी में इन बातों के साथ बहुत ही खास और स्पेशल था, लेकिन कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। सो थैंक यू सो मच मुझे अपनी सुबह का हम सफर बनाने के लिए। जाते जाते बस वही एक बात आपसे कहनी है जो हमेशा आपको याद दिलाती हूँ कि चाहे बॉस की डांट हो, ट्रैफिक जाम हो या लाइफ में कोई भी उलझन हो, एक डीप ब्रीथ लीजिए, गहरी सांस लीजिए और मुस्कुरा कर बोलिए इट हैपेंस। मजे करते रहिए, जिंदगी को जीते रहिए, कीप शाइनिंग कीप स्माइलिंग। होती है कल एक बार फिर से आपके साथ इसी सफर इट हैपेंस में मुलाकात। नमस्कार।

वेलकम बैक एक बार फिर तो बहुत स्वागत है जी थोड़े अपने चाहे थे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 101 एम ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल तुसी बने हुए। देखो बॉलीवुड दे विच ना एक अदाकारा अजिही है कि है जिसनों कदे कोई भुल ही नहीं सकता। बेशक वह अज साडे विचकार नहीं है पर हमेशा जो भी स्क्रीन पर आती है ना तो पुरानी यादा ताजिया कर दी है। नाम है श्रीदेवी। श्रीदेवी ने ना बहुत छोटी उम्र विच एक्टिंग दी दुनिया विच कदम रख लिया सी। अपने करियर के दौरान श्रीदेवी ने सदमा नगीना चांदनी इंग्लिश मिस्टर इंडिया जा जुदाई चालबाज वर्गिया कई यादगार फिल्मा कीतिया जिन्हों तो उन्होंने वक्री पहचान मिली। तो मैं सोचा कि अज श्रीदेवी दया कुछ फिल्मों बारे गल करिए पर उन्हों फिल्मों बारे नहीं जिन्हों के करके फेमस हुई क्योंकि वह फिल्मा तो सबन पता ही है ने जुबान ती रिया ने ना जिम्मे मिस्टर इंडिया हो गई चालवास हो गई इन्हों क्यों भूल सकता है कोई। हाँ उन्हों फिल्मों बारे गल करते हैं जिन्होंने श्रीदेवी ने रिजैक्ट कर दिता सगा। दस दो तुम हैरान रह जाओगे जे तुम उन्होंने फिल्मों बारे जानोगे तो कर दी थोड़ा हैरान पर पहला सुनो एक गीत।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है, ताँ जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
4: यार आई एम सो वरीड, एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस लॉयर टू हैंडल माय केस।
3: मेरी एडवाइस है गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
4: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

हां जी रघुबर फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी वंसर वाले ते चार छे संदेश अलग दिनाल सी बने हुए हो। अगली फिल्म जेडी इस लिस्ट से विच आंदी है किया जिसनू रिजेक्ट किया सी श्रीदेवी ने ओ सी जी बहुत ही हिट सुपर डुपर हिट फिल्म बागवान। तो देखो अमिताभ बच्चन की इस फैमिली ड्रामा विच उन्हां दी ऑन स्क्रीन पत्नी का किरदार हेमा मालिनी ने निभाया है। ये रोल पहला हेमा मालिनी नूं ऑफर नहीं होया सी, मतलब कि हेमा मालिनी पहली पसंद नहीं है अमिताभ बच्चन की इस अमिताभ बच्चन की इस फिल्म के लिए मेकर्स की। ये रोल पहला श्रीदेवी के हिस्से आया सी पर उन्होंने इसनों रिजैक्ट कर दिता। रिजैक्ट होया तो फिर ये हेमा मालिनी कोल गया तो नो डाउट हेमा मालिनी इस रोल के बिल्कुल परफेक्ट लगी।

हां जी, तो एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो सोनी 101 एम ते जी आरचे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। करिश्मा कपूर, माधुरी दीक्षित और शाहरुख खान की एक बहुत ही जबरदस्त सोहनी जही फिल्म सी। उस फिल्म का नाम हैगा है जी दिल तो पागल है। शाहरुख खान स्टारर मूवी हैगी है, बहुत ज्यादा पसंद भी की गई सी। इस पूजा किरदार हैगा जिहड़ा वो श्रीदेवी नूं ऑफर होया सी। पूजा हुण तुसीं पहले सोचो सोचो सोचो कि पूजा किहड़ा किरदार सी। वो श्रीदेवी नूं ऑफर होया सी तां श्रीदेवी ने मना कर दिता सी, तां इह रोल बाद विच किसे होर दे हिस्से आया सी। हुण तुहानूं पता लग गया ना कि पूजा किरदार किसदा सी। जी हाँ, पूजा किरदार निभाया सी माधुरी दीक्षित ने, पर इस दे लई पहला चुनिया गया सी श्रीदेवी नूं।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhvi from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
8: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
10: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

हाँ जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 101 एम ते जी आर चे संदेश अलग दिनास से बने हुए। एक और शाहरुख खान की मूवी हैगी है जिहड़ी श्रीदेवी ने रिजेक्ट की थी, ते वो मूवी सी जी डर। डर दे विच पहली बार तो शाहरुख खान नैगेटिव रोल दे विच नजर आए सी। शाहरुख खान सनी देओल की फिल्म है डर, जूही चावला ने किरण का किरदार निभाया सी। बहुत घट लोग जानते हैं कि यह रोल पहला श्रीदेवी ऑफर होया सी, पर श्रीदेवी ने इस मना करता सी, तो फिर रोल गया जूही चावला के हिस्से। नो डाउट जूही चावला ने इस बहुत ही वधिया तरीके दे नाल निभाया है, पर मेकर्स की पहली पसंद श्रीदेवी। तो हम इमेजिन करते हैं जो श्रीदेवी होंगी तो किस तरह की लगनी सी फिल्म।

हाँ जी, वेला तो हो चुके हैं थोड़े तो इजाजत लैन का, थोड़ा टाटा बाय बाय कहने का। पर देखो हूँ लास्ट बट नॉट लीस्ट एक फिल्म थानू दसनी हैगी है जिहड़ी श्रीदेवी ने रिजेक्ट की सी, ते उस फिल्म जी बहुत ही खूबसूरत जी फिल्म बेटा। जी हाँ, इस मूवी दे लई मेकर्स दी पहली पसंद श्रीदेवी सी। श्रीदेवी ने जदों मना करता सी ना तो बाद दे विच इस फिल्म दे विच माधुरी दीक्षित नूं कास्ट कीता गया सी, ते उन्हां दे हिस्से चले गई। ते उन्हां दी जोड़ी अनिल कपूर दे नाल हिट वी साबित होई, क्योंकि इस तों पहलां तक तां अनिल कपूर दे नाल जोड़ी हैगी है जिहड़ी उह श्रीदेवी दी काफी ज्यादा पसंद कीती जांदी सीगी। ते देखो इह सारियां फिल्मां हैगियां ने जिहड़ियां श्रीदेवी ने रिजेक्ट करतीआं। हुण तुसीं इंज करो कि दसो कि किहड़ी फिल्म तुसीं चाहुंदे हो, या तुहानूं लगता है कि काश फिल्म दे विच श्रीदेवी नूं कास्ट किया जाता तां इह फिल्म बहुत ज्यादा सोहणी होणी सी, है ना? दसो दसो फटाफट देना। रेडियो ब्रिसोनी 101.1 FM साडा फेसबुक पेज है जिथे brisoni@brisoni.com साडी ईमेल आईडी है, जरिए जिहड़ा वी अपनाउणा होए अपनाओ, साडे नाल गल्लां बातां जरूर करते रहा करो, है ना? तां फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू करो। बाकी मैं तां इही कहणी आ जी कि अपना बहुत बहुत ख्याल रखो, कल मिलते हैं, करदे मुलाकात, सत श्री अकाल।

0: ਸ਼ੂਟਰ ਕਾਲੋ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੂਟਰ ਕਾਲੋ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ।
1: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
3: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
4: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
5: इट्स टाइम टू कंप्लीट योर सेंसस। ऑन ट्यूसडे 11th ऑगस्ट 2026 Everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. You can take part online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages and is offered online and by phone. And remember, include everyone staying in your home on census night, including children, babies, and visitors. The census helps build a picture of Australia. It informs planning for things like schools, community services, healthcare, and transport. When you take part, you help make sure your language, culture, and community are represented. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.

0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: The 2026 census is coming this August. The census helps build a picture of Australia, showing how communities are growing and changing, so services and support can be planned for the future. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. In the coming weeks, your household will receive instructions on how to take part, either online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages, and help is offered online and by phone. You can also encourage and support your family and community to be prepared. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: And you are listening to Radio Briswani.
3: Hi guys, I'm Madhvi from the Meat Brothers. And you are listening to Radio Briswani.
4: Hi, this is Salman Khan. And
5: you are listening to Radio Briswani.
6: Hi, this is Deepika Padukone. And you are listening to Radio Briswani.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
8: Hi, I'm Sulsi Kumar. And you are listening to Radio Briswani.
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shah Rukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan, aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
11: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
12: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
13: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
12: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
13: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
12: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
13: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
14: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
15: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
2: MC's Indian and Island Food serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
3: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
4: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
3: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
4: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
5: Anuj, कोई अच्छा सा lawyer suggest करो ना. ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए.
6: अर्शाद lawyers है तुम्हारी problem का solution. कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं. और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे. अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो.
5: अरे वाह, इनका पता बताना.
6: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग. Call Arshad from Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: तुम जीत गए,
3: हम जीत गए।

0: जल्दी चलो, लेट हो गए। ले भाई चाबी।
1: सर ऑन स्टेज 5 मिनट।
0: ओके तुम आ रही हो, मैं जा रहा हूं। लगता रूम में रह गया।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। और सबसे पहले हाउ आर यू फीलिंग टुडे। जी हाँ, क्या है आज। वेल ऑफ कोर्स आज है थर्सडे। थर्सडे मतलब कि बस एक दिन बाद फिर से वीकेंड आ जाएगा। और थर्सडे जो है वो ऐसे ही अच्छी अच्छी जो है वो हवाएं हमारे लिए लेकर आता है। जैसे फ्राइडे होता है ना, और फ्राइडे जो है वो एकदम प्रो मैक्स लेवल पे अच्छी हवाएं हमारे लिए लेकर आता है। वो जो सुकून जो है वो लेकर आता है। लेकिन थर्सडे जो है वो सुकून की सुगबुगाहट जो है वो शुरू हो जाती है। सो आपको पता है कि थर्सडेज जो हैं वो भी हमारे लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे हमें फील होते हैं। मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के बाद जो है हमें थर्सडे बुरा नहीं लगता। थर्सडे हमें ऐसा लगता है कि नहीं, अब तो वीकेंड ऑलमोस्ट आ ही जाएगा। सो वो जो सुगबुगाहट है ना वीकेंड की, वो आने की खुशी ही जो है वो थर्सडे को बहुत ही खास बना देती है। सो या थर्सडे है आज, और आइए प्रोग्राम की करते हैं शुरुआत। और आपको पता ही है वो कैसे होती है। वेल, प्रोग्राम की स्टार्टिंग में हम हमेशा एक हेल्दी रिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, जो कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमें हेल्दी रखने में हेल्प करता है। एंड व्हेन आई से हेल्दी, आई एम टॉकिंग अबाउट मेंटली एंड ऑल्सो फिजिकली टू। सो मेंटली हेल्दी रखता है हमें, और मैं बात कर रही हूँ डीप ब्रेथ एक्सरसाइजेस की। तो सबसे पहले आइए वही करते हैं। क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और इसी के साथ ऐसे ही अच्छा अच्छा फील करते करते अब सीधा चलते हैं प्रोग्राम की खूबसूरत सी शुरुआत करते हैं, और गाना एक बढ़िया सा आपके लिए प्ले करते हैं। जो गाना मैं प्ले करने वाली हूँ अभी आपके लिए, उसका नाम है इश्क बुलावा। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत गाना है हंसी तो फंसी का। और इसी के साथ करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत, और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें।

खान की फरमाइश बिल्लू मुन्नी और शम्स की रामपुर मेरठ और इटावा से, संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर इरशाद कामिल के, पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना कैसा ये इश्क है।

जी दोस्तों, और इसी के साथ प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है, तो अब जरा मौसम की बात कर ली जाए, क्योंकि मौसम के बारे में जानना बहुत जरूरी है भाई। हमारी प्लानिंग होती है और हमारी प्लानिंग को कहीं मौसम गड़बड़ तो नहीं करने वाला है, उसी के बारे में आपको बताने का वक्त हो गया है। तो सबसे पहले मैक्सिमम टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं। 21 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर अभी की बात की जाए तो 18.8 डिग्री सेल्सियस के करीब है। फील आपको हो रहा है 17.1 डिग्री सेल्सियस के करीब। जी हाँ, और ये तो है दिन का टेम्परेचर। और रात की टेम्परेचर की बात की जाए तो 11 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आप देख पाएंगे, जो कि कल और पिछले से पिछले कल के मुकाबले थोड़ा बेटर होने वाला है। बट बारिश जो है वो यहाँ पर भर भर के आपको देखने को मिल सकती है, और उसके लिए आप रेडी रहिए। जी हाँ, और बारिश जो है वो हो रही है, और 1 to 5 mm बारिश जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। एयर क्वालिटी है एकदम एक्सलेंट। जी हाँ, वहीं फ्राइडे की बात की जाए, सैटरडे की बात की जाए तो अगेन बारिश मुझे नजर आ रही है। कल 80% चांसेस है बारिश होने के विद 21 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर। वहीं अगर सैटरडे की बात की जाए तो 50% चांसेस है बारिश होने के विद 22 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर। तो ये तो है आज का और अगले दो दिन के मौसम का हाल। अब ये हाल कहीं आपका हाल ना कर दे बेहाल, ये आपको खुद को देखना है। क्योंकि अगर बारिश आपको पसंद नहीं है और आप कहीं प्लान कर रहे हो जाने का एटलीस्ट सैटरडे को या कल, तो आपको थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा। बाहर निकलने से पहले आपको छाते के बिना आप बाहर नहीं निकल सकते हो। रेनकोट या जो भी नेसेसिटी होती है, जो भी चीजें चाहिए होती हैं बारिश में, आपको के बिना आप नहीं निकल सकते हो। और अगेन बारिश है तो आपको ट्रैफिक भी चेक करके निकलना है, इनकेस आप कहीं ज्यादा देर ना फंस जाओ। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 50 ਸੈਂਟ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵਰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1600 ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਥਾਨੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ 2032 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਇਮਾਰਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਵੈਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਐਥਲੀਟ ਵਿਲੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਡਿਲੀਵਰਿੰਗ ਫਾਰ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਚ ਕਰੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
3: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा आपकी फरमाइशों की तरफ, क्योंकि प्रोग्राम की शुरुआत हो गई और जैसा आप सुन पा रहे हैं गाने भी हमने एकदम मजेदार आपके लिए यहाँ पर लगाए हुए हैं, तो अब जरा आपके गानों की बारी आ जाए। जी हाँ, और अगर आपको नहीं पता मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं बात कर रही हूँ आपके फेवरेट गानों की, आपके फरमाइश गानों की और आपके रिक्वेस्टेड सॉन्ग्स की, जो कि आप किसी को डेडिकेट भी कर सकते हो। जी हाँ, सो बेसिकली अपना फेवरेट गाना आप प्ले करवा सकते हो इस प्रोग्राम इवनिंग वाइब में हमारे साथ, और अगर आप किसी को डेडिकेट करना चाहते हो कोई गाना, उनको स्पेशल फील करवाना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो और मौका है आपके पास। जल्दी से फोन उठाइए, नंबर डायल करना है आपको, नंबर है +9182887107 आई रिपीट +9182887107 तो बस फिर जल्दी से फोन उठा लीजिए, नंबर डायल कर दीजिए, कॉल व्हाट्सएप या मैसेज के थ्रू आप हम तक पहुंचा दीजिए अपनी फरमाइश या डेडिकेटेड सॉन्ग। और यहाँ पर हमारी तरफ से एक और खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए, लाइक इट्स अ क्लासिक फेवरेट, सो आपको जरूर सुनना चाहिए।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अब मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाने वाली हूँ। जी हाँ, एक ऐसी कहानी जिसको सुनकर आप इतने ज्यादा मोटिवेट होने वाले हो, इतने ज्यादा इंस्पायर होने वाले हो कि आपको लगेगा इस दुनिया में कुछ भी अचीव करना मुश्किल नहीं है। मतलब कुछ भी अचीव करना मुश्किल नहीं है। जी हाँ, सो ये कहानी है मेसी की और स्पेन के बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी लामिन यमाल की। जी हाँ, अब ये कहानी शुरू होती है 19 साल पहले। जी हाँ, जब यूनिसेफ के एक फंड रेजिंग कैंपेन में मेसी एक बच्चे को नहलाते हुए नजर आते हैं। जी हाँ, ये कैलेंडर के लिए, बार्सिलोना चैरिटी कैलेंडर के लिए वो पिक्चर्स क्लिक करवा रहे थे और ये यूनिसेफ का कैंपेन था। वहां पे और भी बच्चे थे और वहां पर एक बच्चे को नहलाते हैं यंग मेसी। जी हाँ, 19 साल पहले की बात है तो ऑफकोर्स मेसी भी यंग थे। अब 19 साल बाद ये व्यक्ति जिसको उन्होंने नहलाया था उसी यूनिसेफ के फंड रेजिंग कैंपेन में, वो उनके साथ कम्पीट करने वाला है, क्योंकि वो कोई और नहीं लामिन यमाल थे। जी हाँ, आपने सही सुना, लामिन यमाल ही वो बच्चे थे जिनको नहलाया था मेसी ने उस फंड रेजिंग इवेंट में। आप खुद सोचिए कि इट्स सच अ फुल सर्कल मोमेंट, राइट? मतलब उस बच्चे ने कभी सोचा भी नहीं होगा, और इनफैक्ट उस वक्त जिस वक्त मेसी ने उन्हें नहलाया था और जिस वक्त 19 साल पहले ये इवेंट हुआ था, तब लामिन यमाल बहुत ही छोटे थे। मतलब वो सोच समझ भी नहीं सकते थे, वो उतने छोटे थे। लेकिन लिटिल डिड ही नो कि 19 साल बाद इसी लेजेंड के साथ वो स्टेज शेयर करेंगे, वो मंच शेयर करेंगे, वो ग्राउंड शेयर करेंगे और वर्ल्ड कप के ट्रॉफी के लिए कम्पीट करेंगे। आई मीन इट इज सच अ इंस्पायरिंग मोमेंट। मतलब किसने सोचा होगा, राइट? किसी ने नहीं, मैंने नहीं सोचा था। और जब मैंने इस स्टोरी के बारे में पढ़ा, आई वॉज लाइक कि ओके, आई नीड टू यू नो टेल दिस टू माई लिसनर्स, बिकॉज दिस स्टोरी इज सो सो सो इंस्पायरिंग। एंड यू नेवर नो आप किससे कब मिलने वाले हो फिर से। इट्स अ फुल सर्कल मोमेंट, राइट? सो या आई हैव टू से लामिन यमाल, यू हैव कम अ लॉन्ग वे। एंड मैं डेफिनेटली, और हम सब ये देखना चाहेंगे कि कैसे से आप उस स्टार खिलाड़ी के साथ मंच शेयर करते हो, उनके साथ कंपीट करते हो जिनसे आपने अपने आप को लिटरली नहलवाया था। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: The 2026 census is coming this August. The census helps build a picture of Australia, showing how communities are growing and changing, so services and support can be planned for the future. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. In the coming weeks, your household will receive instructions on how to take part, either online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages, and help is offered online and by phone. You can also encourage and support your family and community to be prepared. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: Aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
3: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. Aap sun rahe hain Radio Briswani.
4: Hi, this is Salman Khan.
5: Aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
6: Hi, this is Deepika Padukone. Aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
8: Hi, main hoon Tulsi Kumar. Aur aap mujhe sun rahe hain Radio Briswani.
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shah Rukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
11: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है, ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित, ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
12: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
13: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
12: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
13: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
12: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
13: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
14: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
15: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
16: दोस्तों, इसी के साथ एक और मूवी रिकमेंडेशन अब मैं आपको देने वाली हूँ। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM और शो चल रहा है इवनिंग वाइब, ऑफ कोर्स आपकी होस्ट एंड दोस्त आर्जेनिविया के साथ। सो यहाँ पर जो मैं आपको रिकमेंडेशन देने वाली हूँ वो है शीप डिटेक्टिव। जी हाँ, द शीप डिटेक्टिव्स। और अब आप बोलो ठीक है, डिटेक्टिव्स शेरलॉक होम और इन सब के बारे में तो सुना है, लेकिन शीप डिटेक्टिव्स ये क्या है? वेल वेल वेल, अगर आप वुल्वरिन के फैन हैं और ह्यूग जैकमैन के फैन हैं तो आपके लिए ये और भी अच्छी मूवी हो सकती है, क्योंकि इसमें ह्यूग जैकमैन ही आपको नजर आने वाले हैं। सो स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक व्यक्ति जो है जो डिटेक्टिव गिरी करता है, और वो अपनी भेड़ों के सामने, उसके पास बहुत सारी भेड़ें हैं, शीप्स हैं, उनके सामने वो करता है। लिटिल डिड ही नो कि उसकी भेड़ें यानी कि उसकी शीप्स जो हैं वो सब कुछ अंडरस्टैंड कर रही है। मतलब बेसिकली वो आधी से ज्यादा डिटेक्टिव बन चुकी है। एकदम से बंदा गायब हो जाता है या उसको कुछ और हो जाता है, आई एम नॉट गोना स्पॉइल इट फॉर यू। मुझे लगता है मैंने काफी सारी स्टोरी आपको ऐसे ही बता दी है। सो उसके बाद वो शीप्स जो है वो अपनी डिटेक्टिव गिरी का इस्तेमाल करके उस बंदे को ढूंढती हैं या क्या करती हैं, दैट आई एम नॉट गोना टेल यू। बट वो डिटेक्टिव गिरी करती हैं प्रॉपर तरीके से, क्योंकि जब वो बंदा उनके सामने डिटेक्टिव गिरी करता था तो उन्होंने वो सब कुछ सीख लिया था। जी हाँ, आपने सही सुना, मूवी का नाम है द शीप डिटेक्टिव्स और ये रिलीज हो चुकी है, आप इसे अमेज़न प्राइम पे देख सकते हैं। और प्लीज आप मुझे बताइएगा आपको ये मूवी कैसी लगी, बिकॉज आई परफेक्ट वीकेंड मूवी, गो फॉर इट एंड लेट मी नो आपको कैसी लगेगी। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जियोनू सोर्स के साथ अब एक फरमाइशी गीत प्ले करने का वक्त हो गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कैसे आप अपने फेवरेट गाने फरमाइश कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो, और यहाँ पर फरमाइशों का सिलसिला ऑफिशियली शुरू हो रहा है। पहली फरमाइश जो हम प्ले करने वाले हैं हमारे आज के प्रोग्राम में, वो आई है हमारी बहुत ही प्यारी लिसनर अमला जी की तरफ से। गाने का नाम है हे सोना हे सोना। जी हाँ, आपको पता चल ही गया होगा कौन सा गाना है। बोलिए, है तारा रमपम का। बहुत ही प्यारी मूवी है, बहुत ही क्यूट मूवी है, अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर चेकआउट कीजिए। एंड थैंक यू सो मच अमला जी, हमेशा की तरह खूबसूरत फरमाइशों के लिए, इंक्लूडिंग दिस वन। आई लाइक इट एंड आई थिंक वी ऑल लव इट, राइट? सो थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए हमारे इस प्रोग्राम को। और ये रहा आपका ये खूबसूरत सा गाना।

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: Honey, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये grocery पास वाले shop से ले सकते हैं ना?
2: Yes, baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ. Quality spices, lentils, rice, flour और frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck. और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
1: अरे वाह! इंटेलिजेंट हो गई हो.
2: MC's Indian and Island Food serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
3: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
4: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
3: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की इंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
4: थैंक्स अटर्नी, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
5: Anuj, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना. ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए.
6: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन. कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं. और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे. अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो.
5: अरे वाह, इनका पता बताना.
6: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग. Call Arshad from Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
7: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ. दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई कंट्री अपने सिविलियंस के लिए, अपने लोगों के लिए अच्छे इनिशिएटिव्स लेती है. जी हाँ, कुछ ऐसा करती है जो कि उनकी वेलबींग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उनकी सिक्योरिटी के लिए काफी अच्छे से काम कर सकता है. ऑफकोर्स ऐसी बहुत सारी कंट्रीज नहीं करती, लेकिन कुछ जो है इसमें काफी आगे बढ़ चढ़कर जो है वो काम कर रही है. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट साउथ कोरिया. जी हाँ, सो साउथ कोरिया हैज डन समथिंग विच इज रियली रियली ग्रेट एंड आई थिंक ऑल द अदर कंट्रीज शुड टेक नोट्स from South Korea on that. Why am I saying that? Well, South Korea ने एक app launch की है और ये कोई normal या private app नहीं है, बल्कि ये एक government app है जो कि allow करती है victims को to see the real time location of high risk stalking suspects. जी हाँ, आपने सही सुना. सो साउथ कोरिया ने एक ऐसा ऐप लॉन्च किया है जो कि विक्टिम्स को ये देखने में हेल्प करता है कि उनके जो स्टॉकर्स हैं, उनकी रियल टाइम लोकेशन क्या है, वो कहाँ है. इनफैक्ट अगर उनके जो स्टॉकर्स हैं वो उनके जहां पर वो हैं, उनके थोड़ा भी करीब तक पहुंचते हैं, तो वो डायरेक्टली अथॉरिटीज को कॉल कर देती है. डायरेक्टली वो पुलिस को कॉल कर देती है. इमरजेंसी कॉल्स जो है वो खुद ही वो ऐप मिला देती है, ताकि जो विक्टिम है, जो कि जो बंदा है, वो अपने आप को सेफ फील करवा सके. आई मीन इमेजिन, कौन सी कंट्री कर रही है ऐसा. सो साउथ कोरिया लिटरली नेल्ड दिस विद इट. जी हाँ, नेल्ड इट विद दिस. यहां पर ये ऐप की जरूरत जो है सिर्फ साउथ कोरिया को नहीं, हर एक कंट्री को है, बिकॉज देयर आर मेनी स्टॉकिंग इंसिडेंट्स जो कि लिटरली बाद में मर्डर्स में बदल जाते हैं या किसी ऐसे एक्सप्लॉयटेशन में चेंज हो जाते हैं जिसको जो है वो रोका जा सकता था. समटाइम्स जो है वो कोर्ट के ऑर्डर्स होने के बावजूद जो स्टॉकर्स हैं वो फिर भी अपना काम जो है कर जाते हैं. ऐसे में साउथ कोरिया ने मेक श्योर किया है कि ऐसा ना हो, एटलीस्ट उनकी कंट्री में. एंड आई थिंक ऑस्ट्रेलिया से हम सबको भी ये चीज जो है, हमारी गवर्नमेंट को भी जो है ये चीज देखनी चाहिए और ऐसा कुछ जो है वो बनाना चाहिए. और नॉट जस्ट ऑस्ट्रेलिया बल्कि जितनी भी और कंट्रीज है, फिर चाहे वो इंडिया हो, फिर चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज हो, सबको इससे सीखना चाहिए बिकॉज दिस ऐप कैन बी रियली रियली गुड फॉर द सिक्योरिटी ऑफ सिविलियंस. जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

जी दोस्तों, और इसी के साथ अब सीधा चलते हैं खबरों की तरफ, रुख करते हैं खबरों का, दुनिया का क्या हो रहा है पॉलिटिकल वर्ल्ड में, वॉर फ्रंट पे। वी आर गोना टॉक अबाउट एवरीथिंग। सबसे पहले शुरुआत करते से हैं अमेरिका से। अमेरिका में धर्म पूछकर भारतीय पर हमला करने का आरोप, 15 बार चाकू से वार। जी हाँ, एक बहुत ही डिस्टर्बिंग खबर अमेरिका से आई है। अमेरिका के यूटा राज्य में एक भारतीय व्यक्ति पर कथित तौर पर उसके धर्म के कारण चाकू से हमला किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शख्स को करीब 15 बार चाकू मारा गया। ये घटना वेस्ट वैली सिटी स्थित वैली सिटी मॉल में सोमवार दोपहर को हुई। रिपोर्टों के मुताबिक मॉल में काम करने वाले भारतीय व्यक्ति सैयद सहलुद्दीन पर पीटर माइकल लॉर्सन ने कथित तौर पर हमला किया। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अभियुक्त पर आरोप है कि हमले से पहले उसने शख्स से उसका धर्म पूछा था। पुलिस ने अभियुक्त पीटर माइकल लॉर्सन को हत्या के प्रयास और प्रतिबंधित खतरनाक हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है। एबीसी न्यूज के मुताबिक अदालत के रिकॉर्ड के हवाले से रिपोर्टों में कहा गया है कि अभियुक्त ने पुलिस को बताया कि उसने कर्मचारी को उसके धार्मिक विश्वासों के कारण निशाना बनाया। सहलुद्दीन को अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी सर्जरी हुई। वहीं कथित हमले को रोकने के लिए आसपास के लोगों ने हमलावर की पिटाई की। इसके बाद वो भी अस्पताल में भर्ती है। सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय कॉन्सुलेट जनरल ने यूटा में हुई इस घटना पर गहरा दुख जताया है। कॉन्सुलेट जनरल ने एक्स पोस्ट में कहा कि हम शख्स के दोस्तों और परिवार के संपर्क में हैं, हर संभव सहायता देने के लिए तैयार हैं। हम स्थानीय अधिकारियों से संपर्क में हैं और मामले पर करीबी नजर बनाए रखने के लिए भी एकदम तैयार हैं।

जी हाँ दोस्तों, वही अमेरिका ने ईरान पर फिर किए हमले। डोनाल्ड ट्रंप ने दी ये चेतावनी। अमेरिका ने बुधवार शाम ईरान पर नए हमले किए और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को चेतावनी दी कि वो बेहतर व्यवहार करे। अमेरिकी सटकॉम ने बताया कि उसने ईरान में अपने नए हमलों के दौरान सैन्य कमांड सेंटर, हवाई सुरक्षा ठिकानों, मिसाइल और ड्रोन से जुड़े ठिकानों और तटीय निगरानी केंद्रों को निशाना बनाया। सेना का कहना है कि ये हमले अब खत्म हो चुके हैं। अमेरिका के मुताबिक इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस क्षमता को खत्म करना है जिससे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों और उनके चालक दल को खतरा पहुंचा सकता है। यह तब हुआ जब ईरान ने दावा किया कि उसने क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया है जिनमें बहरीन और कुवैत भी शामिल है। ईरान के मुख्य वार्ताकार और संसद के स्पीकर मोहम्मद बगर गलीवाफ ने सरकारी मीडिया से कहा कि अगर समझौते से कोई फायदा नहीं है तो ईरान के पास उसे मानने का कोई कारण नहीं है। ट्रंप ने मंगलवार देर रात धमकी दी थी कि अगर ईरान अगले हफ्ते वार्ता में वापस नहीं आता तो पुलों और बिजली घरों पर हमला किया जाएगा। बुधवार देर रात जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या वो इसके लिए कोई समय सीमा देंगे तो उन्होंने कहा, मुझे समय सीमा देना पसंद नहीं है, लेकिन उन्हें पता है उन्हें बेहतर व्यवहार करना चाहिए। ट्रंप ने कहा, वे ईरान समझौता करना चाहते हैं, उन्हें हमारा तरीका पसंद नहीं है। अब हम तय करेंगे कि उनके साथ समझौता करना भी है या नहीं।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल पास ही है।
1: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
2: बिल्कुल, ओम्स ओर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ओर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ओर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
3: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लिए नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाने लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत। Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
4: LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert. Performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane. LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert. Performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.
5: तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन के गलत तरीके से हिरासत में लिया गया। Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे.
6: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
1: अच्छा, वो क्या?
6: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
6: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.
7: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ. ये सरल है, निशुल्क है, और ये लक्षणों के सामने आने से पहले

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: जैस्मीन बाजवा, गुरबाज सिंह एंड सरबजीत चीमा। देखो सरपंच 10 जुलाई नू तुहाडे नेड़े सिनेमा करांच।
2: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

0: excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ. जी हाँ दोस्तों, अब मैं एक और बहुत ही दिलचस्प इंटरव्यू के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ. और ये दिलचस्प इंटरव्यू हुआ एक बहुत ही बड़े फिल्म मेकर का, और मैं बात कर रही हूँ क्रिस्टोफर नॉलन, क्योंकि वो लिटरली सुर्खियों में बने हुए हैं आजकल. उनकी मूवी द ओडिसी इज अराउंड द कॉर्नर, इट्स रिलीजिंग दिस वीकेंड, एंड आई एम क्वाइट इंट्रीग्ड बाय द यू नो वेरी फैक्ट ऑफ इट, सो वेरी आइडिया ऑफ इट. बट द थिंग आई एम गोना टॉक अबाउट राइट नाउ इज क्रिस्टोफर नॉलन, नॉट हिज मूवी द ओडिसी, बिकॉज उसके बारे में हम काफी बात करते हैं. क्रिस्टोफर नॉलन, जी हाँ, उनसे एक इंटरव्यू में जब होस्ट ने पूछा, इंटरव्यूअर ने पूछा कि हमने सुना है कि आप ईमेल्स नहीं करते, क्या यह बात सच है? क्रिस्टोफर नॉलन बोलते हैं कि आपने सही सुना है, जिससे भी सुना है आपने सही सुना है, मैं ईमेल्स नहीं करता. तो इंटरव्यूअर उनसे पूछता है कि अगर आप ईमेल्स नहीं करते, डिजिटल ईमेल्स नहीं करते, तो क्या आपको लेटर्स आते हैं क्या आज भी, पोस्टल लेटर्स? तो क्रिस्टोफर नॉलन बोलते हैं कि हाँ, आप कह सकते हो कि मुझे लेटर्स आते हैं, मुझे प्रिंटेड ईमेल्स जो हैं वो आती हैं और बाय पोस्टल आती हैं. तो वो इंटरव्यूअर कहता है कि आई डोंट नो व्हाट टू से टू दैट, बट क्या ये दुनिया को अपने आप को परेशान ना करने देने का एक तरीका है? दुनिया को अपने आप को परेशान करने का, परेशान करने देने का एक तरीका है? तो क्रिस्टोफर नॉलन कहते हैं कि हाँ, आप कह सकते हो ऐसा, बट अगेन मैं यही कहूंगा कि मैं नहीं चाहता. आई डिड नॉट वॉन्टेड टू वेयर दीज डिजिटल शैकल्स, एंड दैट्स वाई आई डिड इट. यू नो द वर्ड, द टर्म दैट ही यूज्ड, डिजिटल शैकल्स, एंड दैट टॉट मी सो मच. यू नो आई वॉज थिंकिंग अबाउट इट एंड आई वॉज लाइक, या दिस मैन इज टेलिंग अ ट्रूथ राइट हियर. मतलब हम लोग डिजिटल शैकल्स पहने हुए हैं एंड हमें पता भी नहीं है, लाइक हमें बिल्कुल भी पता नहीं है. मतलब वो बंदा, उस बंदे के पास आज भी स्मार्टफोन नहीं है. मतलब आप सोचिए, वो ईमेल्स नहीं करते, उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, वो एक नॉर्मल सा फोन रखते हैं, एक फ्लिप फोन जिसमें कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ कॉलिंग होती है, सिर्फ कॉल होती है. जी हाँ, क्रिस्टोफर नॉलन, द वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म मेकर आउट देयर, डज नॉट हैव स्मार्टफोन. व्हाई? बिकॉज ही डज नॉट वॉन्ट इट. जी हाँ, सो इट इज यू नो अप टू अस. अगेन, इससे हमें एक ही चीज पता चलती है कि अगर हम पुराने तरीके से रहने की कोशिश करेंगे, खुश रहने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम रह सकते हैं, क्योंकि इफ क्रिस्टोफर नॉलन कैन डू इट, वी कैन ऑल्सो. ऑफकोर्स उन्होंने कभी अपने आप को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया उस चीज से, उन्होंने हमेशा से ये तय कर लिया कि मुझे नहीं स्मार्टफोन चलाना, मुझे नहीं ये डिजिटल ईमेल्स करनी, जैसे पहले होता आया है वैसे ही मैं रहना चाहता हूँ. And the word he used, the term he used is digital shekels. I think we need to remember this term, and kaise? It's not a good term. It's a bad term in a way. We need to remember that. And iska matlab bhi hame yaad rakhna hai. Ji haan. Again, Christopher Nolan jaisa storyteller, matlab kya movies banata hai. I think apne aap ko uncorrupted rakhna bahut zyada zaruri hota hai aisi movies banane ke liye. Aur uske liye apni puri ye digital jo पूरा दुनिया है, इससे अपने आप को दूर रखना, क्या खूबसूरत तरीका है, राइट? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, जरूर मुझे बताइएगा. एंड आई एम गोना प्ले अ वेरी गुड सॉन्ग फॉर यू. जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत गाना मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ, और इसका नाम है इशारों इशारों में दिल लेने वालों.

जिनों दोस्तों, अगर आइंस्टाइन, न्यूटन और ये बड़े बड़े साइंटिस्ट और जिन्होंने हमें क्या क्या रचनाएं दी हैं, अगर उनका सामना आज के बच्चों से होता तो वो भी अपना सर पकड़ के वहां से भाग जाते, क्योंकि आजकल के बच्चे जो है वो उनको आउटस्मार्ट कर चुके हैं। मतलब कौन आइंस्टाइन, कौन एंडरसन, कौन है ये सब? हमारे आज के जो बच्चे हैं वो सबसे खतरनाक है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? वेल, एक टीचर स्टूडेंट्स को कहता है और एक स्टूडेंट को कहता है, देयर इज नथिंग द ह्यूमन ब्रेन कांट इमेजिन। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, एक टीचर कहता है अपने स्टूडेंट को, देयर इज नथिंग द ह्यूमन ब्रेन कांट इमेजिन। तो सामने से स्टूडेंट कहता है, ओके रियली, देन इमेजिन अ न्यू कलर। जी हाँ, वो कहता है देन इमेजिन अ न्यू कलर टू हिज टीचर। अब वहां पर ये सुनकर टीचर कहता है कि अब मैं क्या बोलूं, क्योंकि ये जो बच्चा है जिसको मैंने ये एक जिंदगी का, यूनिवर्स का सच समझाने की कोशिश की, इसने मुझे ये सच सिखा दिया। जी हाँ, आजकल के स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत खतरनाक है, बच्चे जो है वो बहुत खतरनाक है। सो कभी भी आप उनको कुछ पढ़ाने की कोशिश करेंगे ना, पहले तो सारी की सारी किताबें और गूगल सब कुछ साथ में खोल के रखिएगा, क्योंकि आपका सर चकराने वाला। वो ऐसा क्वेश्चन आपसे कर देंगे कि आपको लगेगा आइंस्टीन, अरे कौन चाचा थे आइंस्टीन, आइंस्टीन भी फेल हो जाएगा इन बच्चों के सामने। जी हाँ, मतलब टीचर को बोल रहा है कि अच्छा कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, तो इमेजिन करो कोई नया कलर और फिर हमको बताओ कैसा होता है। वेल, टीचर्स भी खतरनाक पर स्टूडेंट लाजवाब। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब वक्त हो गया है हमारे फेवरेट सेगमेंट, मुझे सिर्फ फेवरेट सेगमेंट बोलने की जरूरत है, बाकी तो आप खुद ही समझदार हो, समझ जाते हो। लेकिन हाँ, अगर आप नहीं समझ पा रहे तो उसका एक ही रीजन हो सकता है कि आप हमारे नए लिसनर हो। तो चलो, अगर आप हमारे नए लिसनर हो तो आपको मैं बता दूं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं और ऐसा कौन सा सेगमेंट है जिसकी हम इतनी तारीफ कर रहे हैं, मतलब वो मेरे दिल के करीब है, नॉट जस्ट मेरे बल्कि मेरे लिसनर्स के, हम सबका फेवरेट सेगमेंट है, क्योंकि हम इसमें पुराने गाने प्ले करते हैं आपके लिए और पूरी तरह से वो पुरानी महफिल को यहां पर सजा देते हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अगर आपके पास भी इस महफिल में चार चांद लगाने के लिए कोई पीस, म्यूजिकल पीस पड़ा है, कोई खूबसूरत सा गाना पड़ा है, तो जल्दी से उसे हमारे पास भेज दीजिए यहां पर, क्योंकि अभी पुराने गाने प्ले करने का सबसे अच्छा वक्त है और प्ले करवाने का भी। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से आ जाइए यहां पर। जो गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ सबसे पहला, और वो गाना है कहीं दूर जब दिन ढल जाए। जी हाँ, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना है एंड इट्स अ कल्ट फेवरेट। सो ऑफ कोर्स इसी से शुरुआत करेंगे और फिर करेंगे और बहुत सारी बातें।

दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि कपूर खानदान ने हमेशा से फिल्म इंडस्ट्री पर राज क्यों किया? वेल, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ देयर क्राफ्ट, बिकॉज ऑफ देयर टैलेंट, बट बिकॉज ऑफ देयर ग्राउंडनेस ऑल्सो. जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा, इसका क्या मतलब हुआ? वेल, हमेशा से कपूर खानदान के बच्चों ने और जो एक्टर्स हुए बड़े बड़े, जब वो बच्चे थे, उनको यही सिखाया गया कि आपको बहुत नीचे से शुरुआत करनी पड़ेगी और उसके अलावा देर इज नो अदर वे. जी हाँ, पृथ्वी राज कपूर के बेटे शशि कपूर को शुरुआत करनी थी तो वो थिएटर में जाकर एक जूनियर आर्टिस्ट के द्वारा जो है की तरह उन्होंने काम करना शुरू किया और फिर उसके बाद जो है वो धीरे धीरे धीरे आके उन्होंने एक्टिंग फील्ड में जो है वो एंट्री मारी और उसके बाद वो बड़े स्टार बने. लेकिन किसी ने उन्हें ये नहीं कहा कि हम तुम्हें फिल्म बना के देते हैं, तुम्हें परोस कर सारा खाना जो है वो दिया जाएगा और तुम्हें सिर्फ खाना है. ऐसा किसी ने नहीं कहा, ना पृथ्वीराज कपूर ने, ना राज कपूर ने और ना आगे किसी ने. जी हाँ, करिश्मा कपूर एक बार एक शो के दौरान ये किस्सा सुनाती है कि कैसे राजेंद्र कुमार और मेरे दादाजी राज कपूर एक फिल्म कर रहे थे और मेरे पापा यानी कि रणधीर कपूर उस वक्त कुछ 17-18 साल के होंगे और वो उस पिक्चर के असिस्टेंट बनना चाहते थे. वो असिस्टेंट डायरेक्टर जो है वो बनना चाहते थे. अब यहां पर राज कपूर ने कह दिया कि ठीक है, अगर तुमको असिस्टेंट बनना है तो सबसे पहले तुमको और भी नीचे से शुरुआत करनी पड़ेगी, तुम्हें देखना पड़ेगा सेट पे चल क्या रहा है. और वो काम जो राज कपूर ने उन्हें करने के लिए कहा, अपने बेटे रणधीर कपूर को करने के लिए कहा 17-18 साल की उम्र में, क्या आप गेस कर सकते हो वो क्या था? वो था राजेंद्र कुमार के जूते साफ करना. आप लोग बोलो कि लाइक वी कांट बिलीव दिस, इतना बड़ा स्टार अपने बच्चों से ये क्यों करवाएगा? मतलब ही कुड हैव डन समथिंग एल्स, राइट? मतलब वो थोड़ा अच्छे से और काम भी उनको दिलवा सकते थे. व्हाई ही वांटेड हिम टू स्टार्ट बाय पॉलिशिंग द शूज ऑफ राजेंद्र कुमार? बिकॉज ही वॉज राज कपूर एंड ही न्यू कि अगर आपको किसी क्राफ्ट में घुसना है तो आपको उस क्राफ्ट के बहुत ही बेसिक से शुरुआत जो है वो करनी है. वो चाहते थे रणधीर कपूर अगर डायरेक्टर बनना चाहते हैं और अभी वो असिस्टेंट के तौर पर यहाँ पर आना चाहते थे इस फिल्म के सेट पर, तो उन्हें सबसे पहले काम जो करना है वो सेट पे नजर बनाए रखनी है और सेट पे क्या चल रहा है, और सबसे पहले उन्हें राजेंद्र कुमार के जूते साफ करने हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि सबसे पहले ग्राउंडेड रहना है, उसके बाद जो है वो सक्सेस मिलेगा. क्या बात है. यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only, consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
2: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate. First issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance. Owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
3: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्वानी 1701 AM शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे दिव्या के साथ। दोस्तों एक बात मैं आपको बताऊं, जब भी मैं ये पुराने गाने प्ले करती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि क्या बाकमाल काम जो है वो किया गया है, राइट। मतलब आज मैं सुन रही थी और ये गाना जो है वो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स में से है, ना सिर्फ मेरा बल्कि जब हम बात करते हैं ना कि कॉम्पोजिशन कितनी खूबसूरत हो सकती है किसी गाने की, जी हाँ, तो ये कॉम्पोजिशन जो है वो आज भी इट स्टैंड्स टॉल, जी हाँ। और ये गाना जो है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो मैं बात कर रही हूँ ए दिले नादान की, जी हाँ, ए दिले नादान। अब इसके पीछे एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है। जब इसके बोल लिखे जा रहे थे तो ऐसा कहा जाता है कि जानिसार अख्तर जो कि इसके बोल लिख रहे थे, उन्होंने इसके लिए बहुत सारे खूबसूरत लफ्ज लिखे, जी हाँ, बहुत सारे खूबसूरत लफ्ज लिखे। मतलब आप कह सकते हो कि 700 से ज्यादा लाइन्स जो हैं वो इसके लिए लिखी गई, इस गाने के लिए, स्पेशली इस गाने के लिए। और फिर उसके बाद जो है वो चयन किया गया इन कुछ लिरिक्स का, जी हाँ, जैसे मैंने आपको कहा कि जानिसार अख्तर ने इसे लिखा था और क्या बाकमाल जो है वो लिखा था। और जैसे मैंने कहा कि बहुत ही खूबसूरती से इतने सारे शब्दों के बीच में कुछ चंद शब्दों को जो है वो चुना गया, और फिर उसके बाद इसका जो म्यूजिक बनाया गया, जी हाँ, वो खय्यम ने बनाया। अब मैं इससे पहले खय्यम को नहीं जानती थी जब मैंने सबसे पहले ये गाना सुना, क्योंकि मैंने इस गाने की ट्यून सुनी थी एंड मैं ट्यूनिंग सुनते ही इस गाने की इतनी दीवानी बन गई। मुझे ऐसा लगा कि क्या बाकमाल, मतलब क्या एल्यूरिंग म्यूजिक है ये, क्या मतलब क्या बना दिया है, क्या धुन है ये, मतलब एक ऐसी धुन जो आपके दिमाग में रच जाती है, बस जाती है, आपके दिल में घर कर जाती है वैसी। फिर मैंने इसके पीछे की कहानी पढ़ी, क्योंकि गाना वैसे बहुत ज्यादा स्लो है लेकिन इसकी खूबसूरती आज भी इसको कोई छेड़ नहीं सकता। रजिया सुल्तान का ये गाना ए दिले नादान, जिसको फिल्माया गया है हेमा मालिनी पे, जहाँ पे वो रेगिस्तान में एकदम खूबसूरत से गुलाबी लिबास में लिपटी हुई वहाँ पर रेत में लेटी हुई नजर आ रही है। इसको फिल्माने का तरीका भी जो है वो बहुत ही गजब का था, और ऑफकोर्स इसे जो बनाया गया वो तो लाजवाब था। और लता जी की गायकी, उसके बारे में मैं तुम्हें क्या ही कहूँ, बट आई थिंक फॉर मी द मेन थिंग वॉज द म्यूजिक, द धुन जो खय्यम ने बनाई है। यू टेल मी अबाउट द फेवरेट पार्ट ऑफ दिस म्यूजिक। अगर आपको भी ए दिले नादान पसंद है, आपको भी ये धुन पसंद है, तो मैं आपको बता दूं कि ये खूबसूरत धुन खय्यम नाम के एक बहुत ही बेमिसाल म्यूजिक डायरेक्टर ने बनाई है।

जी हाँ दोस्तों, मैंने तो कहा ही है ये गाना आप जितनी बार सुनोगे इसके दीवाने बन जाओगे, आप हर बार इसकी तारीफ में नए शब्द बयां कर जाओगे, ये गाना ऐसा है। चलिए इसी के साथ, आपने रजिया सुल्तान देखी है या नहीं देखी है जरूर बताइएगा। और अब आपसे विदा लेने का वक्त हो रहा है क्योंकि घड़ी ने कर दिया है इशारा और अब होगा मुझे जाना, बट डोंट वरी, कल होगा डेफिनेटली मेरा आना और हम आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं, सुनाने वाले हैं और जबरदस्त आपसे गपशप करने वाले हैं। आज आप मजे कीजिए, फन कीजिए। कल फ्राइडे का प्रोग्राम होगा तो फ्राइडे तो वैसे ही मजेदार होता है, आपको पता है। कल तो हम मस्ती से मिलेंगे, खुश होकर मिलेंगे। आप लोग बोलोगे ऐसे थोड़ी दुखी होकर मिलते हैं, ऐसे भी तो खुश होकर मिलते हैं, पर चलिए कल वाली खुशी डिफरेंट होती है। सो या मिलते हैं कल, बाय, सी यू, टाटा। और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM। ये लास्ट सॉन्ग आप सबके लिए मेरी तरफ से एक और गजब का गाना।

0: तो क्या तू फिर भी जान है मेरी।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

वाह, कितनी खूबसूरत लग रही है।

दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं यार, तुम कहो तो आज इसे एक नाम दूंगा।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। जी हाँ, सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। ब्रिस्बेन का मौसम आज हल्की बारिश और ठंड का माहौल। जी हाँ, ब्रिस्बेन के आज का अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दिन भर हल्की बारिश और ठंडी हवाएं भी चलती रही, इसलिए अगर आप घर से बाहर निकले हो तो आई होप आप छाते के बिना बिल्कुल नहीं निकले। इसी के साथ ई स्कूटर और ई स्केटबोर्ड क्रैश में एक की मौत, नियमों में बदलाव। जी हाँ, क्वींसलैंड से एक बेहद दुखद खबर आई है। कल रात ब्रिस्बेन से करीब 240 किलोमीटर दूर उरंगन में एक ई स्कूटर और इलेक्ट्रिक स्केटबोर्ड के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें 39 यानी कि 39 साल के एक व्यक्ति के मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद क्वींसलैंड सरकार ने ई मोबिलिटी डिवाइसों को लेकर नए नियम और सख्त कर दिए हैं। इसी के साथ ब्रिस्बेन रोवर का नया सीजन शेड्यूल जारी। जी हां, ब्रिस्बेन के फुटबॉल फैंस के लिए एक बड़ी खबर है। ब्रिस्बेन रोवर ने 2026 और 27 इसुजू यूटीई ए लीग मेन सीजन के लिए अपने मैचों का पूरा ड्रॉ कंफर्म कर दिया है। टीम अपने अभियान की शुरुआत 18 अक्टूबर को एडिलेड यूनाइटेड के खिलाफ अवे मैच में से करेगी। इसके बाद 23 अक्टूबर को सनकॉप स्टेडियम में पर्थ ग्लोरी के खिलाफ पहला होम मैच खेला जाएगा। वहीं सेफ नाइट पेट्रोलिंग में भारी मात्रा में हथियार जब्त। जी हां, नॉर्थ ब्रिस्बेन डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने एक बड़े प्रोएक्टिव एक्शन के तहत सेफ नाइट प्रिसिंक्ट SNP में चेकिंग के दौरान कई अवैध हथियार और चाकू जब्त किए हैं। पुलिस सुपरिटेंडेंट ने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि इस पब्लिक स्पेस में हथियार लाना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं साउथ नानेंगू हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। ब्रिस्बेन के पास ही डी एंगुलर हाईवे पर दोपहर एक सिंगल व्हीकल क्रैश की घटना सामने आई है। 60 की उम्र के एक बुजुर्ग व्यक्ति गाड़ी चलाते समय अचानक मेडिकल इमरजेंसी का शिकार हो गए, जिससे गाड़ी बेकाबू होकर टकरा गई। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने AI डेटा सेंटर्स के लिए जारी की नई गाइडलाइंस। बढ़ते डिजिटल एरा को देखते हुए ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने AI डेटा सेंटर्स के लिए नए सेफ्टी गाइडलाइंस और रेगुलेशंस तय किए हैं। इसका मकसद डेटा प्राइवेसी को मजबूत करना और बिजली पानी की भारी खपत को कंट्रोल करना है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले सोने के दामों में भारी गिरावट। सबसे पहले बात करते हैं आपके बजट की। जी हां, आज भारतीय सर्राफा बाजार में सोने के दामों में एक बहुत बड़ा क्रैश देखा गया है। 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति 100 ग्राम सीधे 2800 रुपए तक गिर गई, जिससे अब 10 ग्राम सोने का भाव 1,43,290 रुपए के आसपास हो गया है। वहीं डीजल और ATF पर बढ़ा विंडफॉल टैक्स। सरकार ने आज यानी 16 जुलाई से डीजल और हवाई ईंधन ATF के एक्सपोर्ट पर विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया है। मिडल ईस्ट में चल रहे तनाव के चलते डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी अब 8.5% रुपए से बढ़ाकर 15.5 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। वहीं इंडिया UK हिस्टोरिक ट्रेड डील हुई लागू। जी हाँ, भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ ऐतिहासिक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट, जिसे CETA भी कहा गया है, कल रात से पूरी तरह लागू हो गया है। इसे भारत की किसी विकसित देश के साथ अब तक की सबसे बड़ी और गोल्ड स्टैंडर्ड डील कहा जा रहा है। वहीं डिजिटल इंडिया का नया माइलस्टोन AI ट्रेनिंग प्रोग्राम। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने देश के छोटे शहरों और गांवों में युवाओं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग देने के लिए एक बड़े नेशनल प्रोजेक्ट की घोषणा की है। इस प्रोग्राम का मकसद अगले 2 सालों में करीब 5 लाख छात्रों को बेसिक कोडिंग और AI टूल्स की ट्रेनिंग देना है। वहीं मॉनसून का अपडेट। उत्तर भारत में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने आज उत्तर और मध्य भारत के कई राज्यों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले
अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ा तनाव, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एयर स्ट्राइक। ग्लोबल फ्रंट से इस वक्त की सबसे बड़ी और चिंताजनक खबर आ रही है, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा विवाद अब जंग में बदल चुका है। आज अमेरिकी सेना ने ईरान के कई मिलिट्री ठिकानों और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास मिसाइल साइट्स पर भीषण एयर स्ट्राइक की है। वहीं रूस का कीव पर बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल हमला। यूक्रेन की राजधानी कीव आज सुबह एक बार फिर दहल उठी। रूस ने कीव पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जिसमें दो लोगों की मौत की खबर है। वहीं फ्रांस में इच्छा मृत्यु कानून को मंजूरी। यूरोप से एक बड़ा सामाजिक और कानूनी बदलाव सामने आया है। फ्रांस की संसद ने लंबे विवाद और बहस के बाद आखिरकार असिस्टेड डाइंग यानी इच्छा मृत्यु से जुड़े ऐतिहासिक कानून को मंजूरी दे दी है। वहीं ब्राजीलियन इंपोर्ट पर अमेरिका ने लगाया 25% टैरिफ। जी हां, अमेरिका ने अपने घरेलू इंडस्ट्री को बचाने के लिए ट्रेड वॉर की तरफ एक और कदम बढ़ाया है। अमेरिकी प्रशासन ने ब्राजील से आने वाले कुछ चुनिंदा सामानों, खासकर स्टील और कृषि उत्पादों पर 25% का भारी इम्पोर्ट टैरिफ लगा दिया है। इसी के साथ ग्लोबल पोल, चीन की लोकप्रियता में इजाफा। एक नए इंटरनेशनल सर्वे और पोल की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के कई विकासशील देशों में अब अमेरिका के मुकाबले चीन की लोकप्रियता और फेवरेबिलिटी रेटिंग काफी ज्यादा बढ़ गई है। वहीं हांगकांग में सुरक्षा कानून के तहत नई गिरफ्तारियां। हांगकांग में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत पुलिस ने एक नया स्वीप ऑपरेशन चलाया, जिसमें कई मशहूर बुकसेलर्स और पब्लिशर्स को गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले फीफा वर्ल्ड कप 2026 अर्जेंटीना और स्पेन के बीच होगा महामुकाबला। स्पोर्ट्स वर्ल्ड से इस वक्त की सबसे सनसनीखेज खबर यही है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल लाइन

0: 6 विकेट से रौंदा। जी हाँ, मेंस क्रिकेट की बात करें तो भारतीय टीम ने इंग्लैंड दौरे की धमाकेदार शुरुआत की है। बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेले गए पहले वनडे मैच में टीम इंडिया ने मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हरा दिया। वहीं इतिहास रच दिया भारतीय महिला क्रिकेट टीम की लॉर्ड्स पर ऐतिहासिक जीत। लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान से भारतीय क्रिकेट के लिए एक बेहद गर्व का पल आया है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को उनके ही घर में इकलौती टेस्ट मैच में 270 रनों के विशाल अंतर से हरा दिया है। वहीं बॉक्सिंग की बात करें तो एशियन अंडर 19 और अंडर 23 में भारतीय बेटियों का जलवा। जी हां, जकार्ता में चल रही एशियन अंडर 19 गेम्स और अंडर 23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने रिंग में अपना दबदबा साबित कर दिया है। इसके साथ टेनिस, जैनिक सिनर ने दोबारा जीता विंबलडन का खिताब। जी हाँ, टेनिस कोर्ट से भी खबर है कि इटली के स्टार खिलाड़ी और टॉप सीड जैनिक सिनर ने अपना विंबलडन मेंस सिंगल्स का खिताब बरकरार रखा है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपसे कल। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM।
1: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हूं। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate. First issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
4: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
5: इट्स टाइम टू कंप्लीट योर सेंसस। ऑन ट्यूसडे 11th of August 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. You can take part online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages and is offered online and by phone. And remember, include everyone staying in your home on census night, including children, babies, and visitors. The census helps build a picture of Australia. It informs planning for things like schools, community services, healthcare, and transport. When you take part, you help make sure your language, culture, and community are represented. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
6: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
7: तो उमसॉग से बात कर। इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
6: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
7: अरे, उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
6: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
7: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
6: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी

0: पड़ेगी। उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 Balaclava Street, वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

ना बदला में, ना बदला।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shah Rukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
9: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां की उपलब्धता नाल हुंदी है. ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 billion ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ. ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ. ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ.

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी, चुपके चुपके चिट्ठियां

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए.
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन. कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं. और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे. अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो.
2: अरे वाह, इनका पता बताना.
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग. कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.
2: Y'all really got it f***ed up right now.

0: KR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.
1: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
2: Vadere kifayati rihaish di shuruaat vadere karan di uplabdhta naal hundi hai. ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਇੰਸਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਘਰ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 billion ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ 4100 hectares ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। Queensland Sarkar, Brisbane Valo Adhikarat. Authorized by the Queensland Government, Brisbane. Navi Queensland Sarkar, 4,000 hectare to vivad, Jameen Rihaish Lai Uplabd Karwari Hai. Ate, Lodwanda Lai, 53,500 Samajik Ate, Community Kar, Mohiya Karwari Hai. A place to call home, Khojo. Queensland Sarkar, Brisbane Valo Adhikarat, authorized by the Queensland Government, Brisbane. Vadere kifayati rihaish di shuruaat vadere karan di uplabdhta naal hundi hai. Ise layi navi Queensland Sarkar bunyadi dhanche vich $2 billion da nivesh kar rahi hai taan jo Queensland bhar vich 98,000 nave karan de nirman da raah kholya ja sake. A place to call home, khojo. Queensland Sarkar, Brisbane Valo Adhikarat, authorized by the Queensland Government, Brisbane.
3: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वोलंगाबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
4: Haji, Mudda Sadhuana.

हां जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101 ते चार छे संदेश अलग दिनाल तुसी बने होए हो। अगली फिल्म जिहड़ी इस लिस्ट दे विच आउंदी हैगी है जिस नूं रिजेक्ट कीता सी श्रीदेवी ने, ओ सी जी बहुत ही हिट सुपर डुपर हिट फिल्म बागवान। तो देखो अमिताभ बच्चन की इस फैमिली ड्रामा विच उन्हां दी ऑन स्क्रीन पत्नी का किरदार हेमा मालिनी ने निभाया है। ये रोल पहला हेमा मालिनी नूं ऑफर नहीं होया सी, मतलब कि हेमा मालिनी पहली पसंद नहीं हैगी अमिताभ बच्चन दी इस फिल्म दे लई मेकर्स दी। ये रोल पहला श्रीदेवी दे हिस्से आया सी पर उन्होंने इस नूं रिजेक्ट कर दिता। रिजेक्ट होया तां फिर ये हेमा मालिनी कोल गया ते नो डाउट हेमा मालिनी इस रोल दे विच बिल्कुल परफेक्ट लगी।

हां जी, तो एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसोनी 101 एम ते जी आर चे संदेश चलक दिनाल से बने हुए। करिश्मा कपूर, माधुरी दीक्षित और शाहरुख खान की एक बहुत ही जबरदस्त सोहनी जही फिल्म सी, तो उस फिल्म का नाम है जी दिल तो पागल है। शाहरुख खान स्टारर मूवी हैगी है, बहुत ज्यादा पसंद भी की गई सी। इस पूजा किरदार हैगा जिहड़ा, ओ श्रीदेवी नू

0: NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा।
0: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
0: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

हाँ जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो दसवाणी 101.1 एफ ते जी आर चे संदेश अलग दिन से बने हुए। एक होर शाहरुख खान की मूवी हैगी है जिहड़ी श्रीदेवी ने रिजेक्ट की थी, ते वो मूवी सी जी डर। डर दे विच पहली बार तो शाहरुख खान नैगेटिव रोल दे विच नजर आए सी। शाहरुख खान सनी देओल की फिल्म है डर, जूही चावला ने किरण का किरदार निभाया सी। बहुत घट लोग जानते ने कि यह रोल पहला श्रीदेवी नूं ऑफर होया सी, पर श्रीदेवी ने इस नूं मना करता सी, तां फिर रोल गया जूही चावला दे हिस्से। तां नो डाउट जूही चावला ने इस नूं बहुत ही वधिया तरीके दे नाल निभाया हैगा, पर मेकर्स की पहली पसंद श्रीदेवी। तो हुण इमेजिन करदे आ जे श्रीदेवी हुंदी तां किस तरह दे लगनी सी ये फिल्म।

0: ਸ਼ੂਟਰ ਕਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੂਟਰ ਕਾਲ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ।
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
8: से। To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shah Rukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
10: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 billion ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
11: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
12: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
11: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
12: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
11: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
12: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
13: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
14: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: अनु।
1: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। प्री सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.
3: जीवन से भरी तेरी आँखें

0: this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhvit from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

जीवन भक्ति शक्ति और कर्मों का संगम है ये जीवन। इस जीवन को समझना बहुत ही मुश्किल है, अनेक तरह की कठिनाइयों से भरा पड़ा है ये जीवन और अनेक तरह की पहेलियों से उलझा भी पड़ा है। और इस जीवन में उलझ उलझ कर हम कब अपनी लीला ही खत्म कर लेते हैं हमें समझ नहीं आता। ये भागता हुआ जीवन हमें कब अंतिम पड़ाव पर पहुंचा देता है हम समझ नहीं पाते और हमें लगता है कि हम तो जीवन को जान और समझ ही नहीं पाए। तो चलिए आज एक छोटी सी कोशिश फिर से करते हैं, जीवन आधार के जरिए अपने जीवन को, अपने जीवन की समस्याओं को और जीवन मरण के इस बंधन को जानने और समझने की। धरती यानी कि हम मनुष्यों और आकाश यानी उस ऊपर वाले के बीच की दूरी को भरने की एक कोशिश करते हैं जीवन आधार में। और शुरुआत करते हैं इस अगले गीत के साथ। रहिए सताक्षी के साथ और सुनते रहिए जीवन आधार, सिर्फ और सिर्फ रेडियो ब्रिस्वानी।

जीवन की बारीकियों को सिखाता हमारा खास सफर जीवन आधार। इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्मानी 107.0 वाले पर श्रोताओं, और आपके साथ सताक्षी सफर में है और हम कई खूबसूरत गानों के साथ इस सफर को सजाने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार मनुष्य जब अकेला होता है तो बहुत विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है, क्योंकि कहते हैं ना कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे लोगों का साथ, लोगों की भीड़ बहुत पसंद आती है। लेकिन अगर अध्यात्म की ओर जाइए तो अध्यात्म ये कहता है कि अकेला होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं आपका अकेलापन आपको ये सिखाता है कि वास्तव में आपके पास आपके अलावा और कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में जब आप आए थे तो बिल्कुल तन्हा आए थे, और इस दुनिया से जब आप जाएंगे, आपके पास नौकरी हो अच्छी, अच्छा करियर हो, अच्छा बिजनेस हो, अच्छा पैसा हो, अच्छा घर हो, अच्छा परिवार हो, लेकिन कुछ भी आपके साथ नहीं जाता है। यहाँ तक कि आपका शरीर भी आपके साथ नहीं जाता है जिसमें आप जी रहे हैं, जिसके अंदर आप रह रहे हैं। बहुत गहरी बात है और इस बात को समझने में ही हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है। आइए, शायद हम थोड़ा बहुत समझ पाए हो इस बात को, और इसी बात के साथ आगे बढ़ते हैं अगले गीत के साथ भी। अभी सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी, सताक्षी आपके साथ।

0: रेडियो ब्रिस्वानी पर आप सुन रहे हैं जीवन आधार। जी हाँ, ये सफर जो है ये आपकी हमारे जीवन को ही हमें समझा रहा है, हमें बता रहा है, और इसी सफर के साथ हम और आप आगे चल रहे हैं। कुछ और गीत इतने खूबसूरत हैं जो जिंदगी से हमें भर देते हैं और जिंदगी से मिलवा भी देते हैं, उस ऊपर वाले से कुछ गीत हमें मिलवा देते हैं। एक ऐसे ही गीत को भी आपके लिए यहाँ पर प्ले करने जा रही हूँ, इसे सुनिएगा और सुनते रहिए जीवन आधार सताक्षी के साथ।
1: एक दिन

मुझे ना श्रीमद् भगवत गीता बहुत पसंद है, क्योंकि कहते हैं और मैंने ये देखा भी है कि श्रीमद् भगवत गीता में आपके हर सवाल का जवाब है। इसी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी जिंदगी की समस्या हो ना, उसके 3 समाधान है। आप इस बात को बहुत आजमा के देख लीजिए, चाहे तो आपकी किसी भी समस्या के सिर्फ और सिर्फ 3 समाधान है। या तो आप उस समस्या के साथ सब्र कीजिए, आप पेशेंस रख लीजिए। अगर आप उस सिचुएशन को, जिंदगी की उस प्रॉब्लम को, उस परेशानी को, उस समस्या को बदल सकते हैं तो आप बदल दीजिए, और या फिर उसे छोड़ दीजिए। उसे छोड़ दीजिए वक्त पर, क्योंकि वक्त कई सारी चीजों को ठीक कर देता है। और इसके अलावा चौथा समाधान आपकी सिचुएशन का और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो देखिए आप अपनी प्रॉब्लम्स पर ये 3 चीज अप्लाई करके कि आप इनमें कौन सी चीज अपनी उस सिचुएशन में, अपनी उस प्रॉब्लम में अप्लाई कर सकते हैं और उससे आप निकल सकते हैं या उसको आप ठीक कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम अभी जीवन आधार में इस अगले गीत के साथ। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701।

रेडियो ब्रिस्वानी पर जीवन का ये साथ है, ये सफर है जीवन आधार का, जिसमें आप एक बार फिर से सताक्षी के साथ आ जाएं और हम और आप मिलकर अपने जीवन को जानने की एक बहुत ही बेहतरीन सी कोशिश इस सफर में कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे इस अगले गीत के साथ। हमारे साथ सुनते रहिए जीवन आधार, सिर्फ और सिर्फ रेडियो ब्रिस्वानी पर।

कद नहीं, आपकी विनम्रता आपको बड़ा बनाती है। एक बार फिर से सताक्षी करती है आपका स्वागत रेडियो प्रस्वानी पर श्रोताओं। और कद से मतलब यहाँ आपकी हाइट से नहीं है, कद से यहाँ मतलब है श्रोताओं आपकी पोजीशन से। आप कितने भी ऊंचे बन जाएं, आप कितने भी बड़े बन जाएं, लेकिन वो दोहा तो आपने सुना ही होगा, बड़ा भया तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। यानी अगर आप बड़े हैं और आपका बड़ा होना किसी के भी काम नहीं आ रहा है, आपका ऊंचा चरित्र किसी के भी काम नहीं आ रहा है, तो आपका बड़ा होना व्यर्थ है। बड़प्पन असल में दूसरों को खुशियां देने में, दूसरों की जरूरत पूरा करने में है। आप किसी भी पोजीशन पर हो, अपने हिसाब से अगर आप दूसरों को खुशियां दे पाते हैं, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ला पाते हैं या उनके लिए कुछ भी कर पाते हैं, तभी आपके बड़े होने का मतलब है। इसलिए ही कहते हैं कि हमेशा विनम्र रहिए, क्योंकि हम कई बार आपसे कह चुके हैं जीवन आधार में कि आपके साथ आपकी पोजीशन नहीं जाने वाली है। अगर कुछ जाएगा यहां से तो सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म ही जाएंगे। उन्हीं कर्मों के नाम है ये अगला गीत। सुनिए और सुनते रहिए सताक्षी के साथ जीवन।

0: जीवन आधार में अपने जीवन को, अपनी संपत्ति को, अपने कर्मों को जानने की एक कोशिश आज आप फिर से कर रहे हैं मेरे साथ, और इस कोशिश में कुछ रंग भर रहे हैं हमारे ऐसे गाने जो जीवन भक्ति और साधना से भरे हुए हैं। ऐसे ही एक गीत के साथ आगे बढ़ेंगे, अभी सुनते रहिए हमारे साथ जीवन आधार।
1: सुख हो या सुख, जब सदा संग रहे ना कोई,

दोस्तों कहते हैं आप जब इस दुनिया में जन्म लेते हैं तो कुछ आपको बातें जीवन की आपका परिवार सिखाता है, आपके माता पिता सिखाते हैं, कुछ आपको स्कूल कॉलेज की डिग्रीज सिखाती हैं, लेकिन जीवन के सही पथ को जानने के लिए, अपनी समझ को विकसित करने के लिए आप सबके जीवन में, हम सबके जीवन में एक गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि गुरु ही है जो आपको सही मार्ग दिखा पाता है आपके जीवन का, आपको कैसे चलना है जीवन के पथ पर ये बता पाता है। अगर गुरु नहीं होगा तो आपकी समझ कभी विकसित नहीं हो पाएगी। हमारी समझ तो उतनी ही है ना कि अगर हमें जानवर कहा जाए तो हम नाराज हो जाते हैं, लेकिन अगर हमें शेर कह दिया जाए तो हम खुश हो जाते हैं, है ना। लेकिन देखा जाए तो इन दोनों में क्या ही अलग है, दोनों ही तो सिमिलर है। इसी ज्ञान को विकसित करने के लिए गुरु अत्यंत आवश्यक है, और इसीलिए गुरु को प्रभु से भी ऊपर दर्जा दिया गया है। उसी गुरु की वंदना करते हैं इस अगले गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो ब्रजवाणी और रहिए सताक्षी के साथ।

तो श्रोताओं, ये था आज एक और जीवन का हमारा आपका बेहतरीन सा साथ जीवन आधार में। आई होप कि आपने आज इस सफर को एक बार फिर से जरूर सुना होगा और आपको अच्छा लगा होगा। जीवन से जुड़ी कुछ खास बातों के साथ और कुछ खास नगमों के साथ कल इसी सफर में आपके साथ शताक्षी की होगी फिर से एक और मुलाकात। हम और आप साथ साथ अपने कर्मों को, अपने जीवन को और जीवन के आधार को जानने की और समझने की करेंगे कोशिश। आज के सफर से दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: गुड मॉर्निंग ब्रिस्बेन, नमस्कार, अदाब और सत श्री अकाल जी। मैं हूं आपके दोस्त और होस्ट आरजे चानी जैन और आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी। उम्मीद है आपका दिन एनर्जी और पॉजिटिविटी से भरा रहे। तो दोस्तों, आज के शो में हम बहुत सारी बात करने वाले हैं, इंटरनेशनल ब्रेकिंग न्यूज, इंडियन अपडेट्स, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, अमेजिंग फैक्ट्स और भी बेहतरीन बातें करेंगे हम सभी। बस आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए मेरे साथ रेडियो ब्रिस्वानी में। तो आइए शुरुआत करते हैं चानी के सफर प्रोग्राम में इस गीत के साथ। आप बस कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी।

वेलकम बैक जी रेडियो ब्रिस्वानी में। तो आइए सबसे पहले हम टॉप हेडलाइंस जान लेते हैं जिससे हम अपडेट रह सकते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 अपने फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है और फुटबॉल फैंस का एक्साइटमेंट जो है पीक पर है। वहीं पर इंडिया और यूके के बीच ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत में अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिल रही है। अगली अपडेट की बात करें तो स्काई रूट एरोस्पेस की विक्रम 1 मिशन से इंडिया के प्राइवेट स्पेस सेक्टर को एक और बड़ा बूस्ट मिलने की उम्मीद है। वहीं पर आईसीसी ने 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में बदलाव की अनाउंसमेंट की है, जिसे कि इंडिया और पाकिस्तान के 3 बार तक आमने सामने आने की पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ गई है। आईएस के साथ बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं नेक्स्ट सॉन्ग ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी।

हां जी, आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी चानी के साथ। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे अगली अपडेट की ओर। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल इस वीकेंड स्पेन और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। फुटबॉल लवर्स के लिए ये सबसे बड़ी स्पोर्टिंग इवेंट्स में से एक होगा। वहीं पर क्लाइमेट चेंज के चलते दुनिया भर में स्पोर्ट्स इवेंट के शेड्यूल्स और सेफ्टी अरेंजमेंट में काफी बदलाव किया जा रहा है। वहीं पर दोस्तों, अगर हम इंडिया अपडेट की बात करें तो ईपीएफओ मेंबर्स के लिए इंटरेस्ट क्रेडिट प्रोसेस को जल्दी से कंप्लीट करने की तैयारी चल रही है, जिससे कि लाखों इम्प्लॉइज को फायदा होगा। वहीं पर भारत का प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम लगातार मजबूत हो रहा है और नए मिशंस पर सबकी नजर बनी हुई है। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और जानेंगे बहुत सारी बातें ऑनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी।

हाँ जी, तो आप सभी सुन रहे हैं ये प्यारे से गीत ऑनली ऑन रेडियो ब्रिस्मानी। वहीं पर अगर हम एनवायरमेंट की बात करें तो दोस्तों, प्लास्टिक पॉल्यूशन को कम करने के लिए कई देशों में रीयूजेबल प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है, और छोटे छोटे स्टेप्स जो है वो भी एनवायरमेंट पर बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं, इसीलिए हमें भी छोटे छोटे स्टेप्स जरूर उठाने चाहिए। वहीं दोस्तों, थोड़ी सी अगर हम स्पोर्ट्स अपडेट में नजर डालें तो क्रिकेट फैंस की नजर अब आने वाली इंटरनेशनल सीरीज पर बनी हुई है। वहीं पर टेनिस और फुटबॉल टूर्नामेंट में भी कई यंग प्लेयर्स जो है शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जैसे मैंने आपको फीफा वर्ल्ड कप का बताया, तो दोस्तों इसका जो एक्साइटमेंट है वो भी अपने पीक पर है और फैंस जो है फाइनल की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, आपको इंतजार नहीं करवाते हैं, सुनाते हैं ये गीत ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्मानी।

इस ट्रैक के बाद एक बार फिर से आप सभी का वेलकम बैक है जी। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी और आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी दोस्त जानी जैन के साथ। चलिए बिना देरी किए नजर डालते हैं कुछ और बड़ी और जरूरी खबरों पर। मौसम की बात करें तो दोस्तों, मॉनसून कई राज्यों में अच्छी बारिश लेकर आया है, जिससे कि खेती को फायदा मिलने की उम्मीद है। हालांकि कुछ इलाकों में हैवी रेन को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है। वहीं अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ब्रिस्बेन सहित ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों में स्कूल हॉलीडेज के दौरान पार्क, म्यूजियम और फैमिली एक्टिविटीज में भी अच्छी भीड़ देखने को मिल रही है। रिन्यूएबल एनर्जी पर दुनिया भर में जोर दिया जा रहा है। सोलर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स में लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे हैं। वहीं पर दोस्तों, डॉक्टर्स का कहना है कि विंटर सीजन में हाइड्रेट जरूर रहें, हाइड्रेशन को इग्नोर ना करें। ठंड में भी दिन भर पर्याप्त मात्रा पर पानी जरूर पीना है। तो ये मत सोचिए कि ठंड हो गई है, प्यास नहीं लग रही है तो हमें पानी की नीड नहीं है, लेकिन आपको 2 से 3 लीटर डेली पानी पीना है, याद रखिएगा। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन योर रेडियो ब्रिस्बेनी।

हां जी, वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्वानी में। दोस्तों, जहां पर इतनी सारी बात की तो बिजनेस अपडेट तो बनता है। दोस्तों, अगर हम यहां पे गोल्ड की बात करें तो गोल्ड की कीमतें जो हैं वो उसमें उतार चढ़ाव आ ही रहा है, वो देखने को मिल रहा है। कभी हाई हो रहा है, कभी लो हो रहा है, लेकिन जी थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं पर डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन बैंकिंग का यूज लगातार बढ़ रहा है। एआई की बात करें तो एआई और टेक्नोलॉजी सेक्टर में नए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रहे हैं। तो दोस्तों, बॉलीवुड की अगर हम बात करें तो बॉलीवुड और साउथ सिनेमा दोनों में ना कई बड़े प्रोजेक्ट्स इस साल रिलीज होने वाले हैं। तो भाई इंतजारी जो है ना खत्म होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में नए नए गाने, नए नए सीन्स जो है, नए नए मूवीज आप सभी को देखने को मिलेगी। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी।

इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे। और दोस्तों, आप सभी को एक ब्रेकिंग न्यूज बताना चाहते हैं, वो ये कि ओडिशा के पुरी में इस वक्त बहुत बड़ी खबर आई है। जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भारी भीड़ के बीच जो है भगदड़ जैसी हालात बन गए हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार एक श्रद्धालु की मौत भी हो गई है, जबकि 100 से अधिक श्रद्धालु जो है बेहोश या फिर बीमार पड़ गए हैं। घायलों और प्रभावित लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है और प्रशासन ने मौके पर सुरक्षा व्यवस्था और मेडिकल टीमों को और भी मजबूत कर दिया है और घटना की जांच जो है शुरू कर दी है। भगवान जगन्नाथ की पावन रथ यात्रा में दोस्तों हुई इस दुखद घटना ने सभी श्रद्धालुओं को झकझोर कर रख दिया है और हमारी यही प्रार्थना है कि सभी घायल श्रद्धालु जल्द से जल्द स्वस्थ हो। तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम, जहां पर आज हम सभी ने बहुत सारी अपडेट्स, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानी है। और इसी के साथ दोस्तों, ये प्रोग्राम भी यहीं पर समाप्त होता है। वीकेंड आ चुका है, आप सब इंजॉय कीजिए, तंदुरुस्त रहे, सेहतमंद रहे, अपने परिवार के साथ हंसते मुस्कुराते हुए ये वीकेंड को इंजॉय जरूर कीजिए। मिलेंगे आपको अगले वीक यानी कि मंडे, तब तक के लिए आप फंडे को जारी रखते रहे। टेक केयर, बाय बाय, सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो प्रसवानी 1701 है। हमारी सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। न्यूयॉर्क में बग्घी बैन करने की मांग, भारतीय किशोर की मौत के बाद पिता ने तोड़ी चुप्पी। अमेरिका में मां को बचाने की कोशिश में बग्घी से गिरकर जान गंवाने वाले भारतीय किशोर के पिता दीपक महाजन ने न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल से बग्घी पर रोक लगाने की अपील की है। ये बात उन्होंने तब कही जब एक पैनल उनके बेटे रोमांच के नाम पर प्रस्तावित कानून पर विचार कर रहा था। फ्रांस ने वेंस को भेजा गोपनीय संदेश, कुशनर विटकॉफ पर लगाए युद्ध से मुनाफे के आरोप। अमेरिका और ईरान के बीच जारी कूटनीतिक खींचतान के बीच अमेरिकी मीडिया संस्थान ड्रॉपसाइट न्यूज की एक रिपोर्ट ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट में एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी के हवाले से दावा किया गया है कि पिछले महीने स्विट्जरलैंड में हुई अप्रत्यक्ष वार्ता के दौरान ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के लिए एक गोपनीय संदेश भेजा था। इसमें आरोप लगाया गया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर पश्चिम एशिया में लंबे समय तक शांति स्थापित नहीं होने देना चाहते और युद्ध की परिस्थितियों से वित्तीय लाभ उठा रहे हैं। अमेरिकी सेना पर $1.5 ट्रिलियन खर्च की तैयारी, एआई रोबोटिक्स पर जोर दे रहे ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगले वित्त वर्ष में अमेरिकी रक्षा बजट को बढ़ाकर $1.5 ट्रिलियन करने की घोषणा की है। पेंसिल्वेनिया में आयोजित डिफेंस एंड इनोवेशन समिट को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि ये निवेश केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नहीं बल्कि अमेरिका में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करने के लिए भी किया जा रहा है। आइए जुड़ते हैं भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों का बड़ा कदम, एआई के लिए मिलकर बनाएंगे साझा नियम। मोबाइल बैंकिंग, अस्पताल, पढ़ाई और सरकारी सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को बढ़ाने के साथ ही उसके गलत इस्तेमाल का खतरा भी बढ़ रहा है। इससे बचाव के लिए अब दुनिया एआई के साझा नियम बनाने की कोशिश कर रही है। भारत, चीन, रूस और ब्राजील समेत ब्रिक्स के सभी देश मिलकर तय करने का प्रयास कर रहे हैं कि एआई और दूसरी तकनीकों के लिए ऐसे कौन से कॉमन नियम बनाए जाएं जिनका सभी अनुशासित तरीके से पालन कर सकें। सेना प्रमुख ने किया सिलीगुड़ी कॉरिडोर का दौरा। भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने हाल ही में पूर्वी कमान के तहत आने वाले प्रमुख सैन्य ठिकानों का दौरा किया है जिनमें बेंगडुबी सैन्य थाना भी शामिल है। ये थाना रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत के लिए सबसे जरूरी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर स्थित है। नेपाल और बांग्लादेश को अलग करने वाला हिस्सा 20 किलोमीटर से भी कम चौड़ा है। ये कॉरिडोर नेशनल सिक्योरिटी के लिए खास महत्व रखता है क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट को बाकी भारत से जोड़ने वाला एकमात्र रोड और रेल लिंक है। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग. नीलम का प्यार भर नमस्कार दोस्तों. चार मिनट हो गए हैं 7:00 और सुबह का सफर में आप शामिल हो गए हैं हमारे साथ. 9 बजे तक ये साथ रहेगा दोस्तों. आज फ्राइडे है 17th July 2026. भीगा भीगा सा मौसम है. थोड़ी देर में आपको फोकास्ट बताएंगे हम. और सप्ताह का अंत भी है तो एवरीवन इज एक्साइटेड. रास्ते पे है आप, हले हले सफर कीजिएगा अपनी मंजिल की ओर. ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से. आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा गुजरे, कहना चाहेंगे वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. आगे बढ़ते हैं.

दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत आप सुन रहे थे और अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत कर लेते हैं आपका। रेडियो विज़वानी पर शामिल है आप। चलिए देखते हैं फोरकास्ट में क्या बताया गया है। ब्रिस्बेन 13 डिग्रीज अभी है, ड्रिजल और विंड गस्ट आर अप टू 28 किलोमीटर एन आवर और आज 95% चांस ऑफ रेन बताया गया है। सैटरडे को 90% चांस रेन रहेगा, संडे को 90% चांस रेन रहेगा। मेलबर्न 5 डिग्रीज अभी है, मोस्टली क्लाउडी डे रहेगा, टॉप्स रहेंगे 18 और विंड गस्ट 11 किलोमीटर एन आवर। कैनबरा 2 डिग्रीज, मोस्टली क्लाउडी डे, टॉप्स रहेंगे 14, सनी डे बताया गया है। लेट ऑन इन द डे सिडनी 12 डिग्रीज अभी है, क्लाउडी डे रहेगा और आज के लिए सिडनी में 95% चांस ऑफ रेन बताया गया है और टॉप्स रहेंगे 17। गोल्ड कोस्ट 14 डिग्रीज अभी है, टॉप्स रहेंगे 20 और विंड गस्ट बताया गया है 37 किलोमीटर एन आवर और आज 100% चांस रेन बताया गया है गोल्ड कोस्ट में। सनशाइन कोस्ट के लिए बताया गया है 16 डिग्रीज अभी है और आज 90% चांस ऑफ रेन रहेगा, विंड गस्ट विल बी 40 किलोमीटर एन आवर। तो ये कुछ फोरकास्ट हम आपको दे रहे थे। तो आज तो भीगा भीगा सा मौसम रहेगा, बहुत ही खूबसूरत एंड दोस्तों और ठंड भी है एंड अच्छा कॉम्बिनेशन है टू हैव नाइस टी एंड कॉफी एंड कुछ चटपटा सा। अभी टू अर्ली है मॉर्निंग में, लेकिन चाय तो पी सकते हैं ना, चाय एंजॉय कर सकते हैं आप हमारे साथ जुड़े हैं एक कप ऑफ चाय के साथ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत से गीत लाए हैं आपके लिए। हैप्पी फ्राइडे विश करना चाहेंगे आपको। मैं हूँ आपके साथ ही नीलम।

of all थी खुसरो से गीत आप सुन रहे थे द बर्निंग ट्रेन से इस गीत को हमने लिया. वैसे आगे बढ़ते हैं सुबह का सफर में. वैसे कहते हैं कि शब्द ही दवा देते हैं और शब्द ही घाव. तो देयर वाज समथिंग सिमिलर लाइक दिस कि जो आप परोसोगे वो आपको खाना ही पड़ेगा. तो जैसे वर्ड्स आप निकालते हो अपने मुंह से तो ध्यान रखिए दोस्तों कि किसी को घाव ना दे. Maybe act as दवा, right? And इसका मतलब नहीं है कि आपको किसी को please करना है. Please नहीं करना है, but किसी को hurt भी नहीं करना है ना. तो ऐसे ही अपने आप पर ये नियंत्रण जरूर धरे. चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं. आप सुन रहे हैं रेडियो प्रिजवानी, आपकी अपनी पहचान. सुबह का सफर में शामिल हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत करते हैं आपका.

0: नमस्कार, दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी
7: से। टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: वेलकम बैक दोस्तों, और जो लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो विश करना चाहेंगे वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे आपके लिए, ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से एंड बेस्ट विशेस। और एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई भी इम्पोर्टेंट ओकेजन है आपके लिए लाइफ में आज सेलिब्रेट कर रहे हैं आप, तो ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इट्स 7:32

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: वेलकम बैक दोस्तों, और सुबह का सफर में आगे बढ़ते हैं। वैसे मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी जहां पर बता रहे थे कि किस तरह के जो चॉपिंग बोर्ड्स है जो हम यूज करते हैं किचन में आए दिन, तो किस तरह से ये अफेक्ट करते हैं। एक्चुअली मैं पढ़ रही थी तो जहां तक पूरे आर्टिकल फिनिश नहीं की, लेकिन यू नो कहते हैं कि जो आधा ज्ञान होता है वो बहुत डेंजरस होता है आपके लिए, तो आधा ही ज्ञान शेयर करते हैं फिलहाल के लिए। तो बातें हो रही थी यहाँ पर कि जो चॉपिंग बोर्ड्स हम यूज़ करते हैं, यू नो वाइट वाला होता है और प्लास्टिक का होता है जो हम यूज़ करते हैं, तो कहते हैं कि जब हम कोई फोर्स उस पर यूज़ होता है या ब्लेड्स जो नाइफ हम उस पर लगाते हैं, आप देखोगे कि उस पर ढेर सारे मार्क हो जाते हैं एंड वो मार्क नहीं जाते हैं, ग्रूव्स हो जाते हैं। एंड ऑब्वियसली जब नेक्स्ट टाइम आप काटते हो उस पर, फिर ओवर एंड ओवर टाइम पर, तो मार्क्स बढ़ते जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि उसमें से जो प्लास्टिक निकलता है वो सीधा सीधा हमारे टमी में जाता है, और पढ़ने के बाद काफ़ी सिक फीलिंग सी आई मुझे। तो और वैसे हम यहाँ पर बड़े ईमानदारी से जाकर अपने जो वाटर बॉटल्स है वो डिफरेंट वाला लाते हैं, शॉपिंग भी जब हम जाते हैं पेपर बैग्स यूज़ करते हैं, बचना चाहते हैं प्लास्टिक से, लेकिन घर में अगर ऐसा चॉपिंग बोर्ड रखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा प्लास्टिक आप खा ही जाते हैं खाना के साथ। लेकिन नो सीरियसली दोस्तों, कि अगर हम जब उस तरह के जो चॉपिंग बोर्ड्स है जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो बेसिकली 50 ग्राम्स ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स फ्रॉम कटिंग बोर्ड हम एवरी ईयर लगभग स्वलो करते हैं, सो विच इज़ ऑब्वियसली वेरी वेरी डेंजरस, और हमारे जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको पूरा खराब कर देते हैं, हमें सिक करते हैं। तो ढेर सारे इस पर एनवायरमेंटल स्टडीज हुए हैं एंड एवरीथिंग, और रिसर्च हुआ है नॉर्थ डकोटा स्टेट यूनिवर्सिटी में, और क्या कहते हैं जो माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं, टाइनी प्लास्टिक फ्रेगमेंट्स होते हैं स्मॉलर देन 5 मिलीमीटर्स जो होता है, और ये मैकेनिकल फोर्स नाइफ स्लाइडिंग अक्रॉस कटिंग बोर्ड थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स, एंड once ingested some can accumulate over time in the gut, blood and organs, or you know, or ye hamare liye bahut hi hanikarak hai, and you know jaise jaise hum grow old hote hain hamare jo body hai usko bahut zyada takleef hoti hai to fight off everyday toxins, to ये डॉक्टर्स आर नाउ फाइंडिंग दैट माइक्रोप्लास्टिक्स एक्ट एज पावरफुल एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टर्स, दैट मीन्स दे मेस विद आवर हॉर्मोन्स एंड ट्रिगर अनएक्सप्लेन्ड गट इश्यूज और क्रोनिक जॉइंट इन्फ्लेमेशन, ये हमारे एनर्जी को ड्रेन करता है एंड एवरीथिंग। तो कहते हैं कि ऑब्वियसली दे आर सो दैट मेनी जो कहते हैं दैट मेनी माइक्रो प्लास्टिक्स जो कहते हैं इट्स मोर लाइक सो मेनी क्रेडिट कार्ड्स आप स्वॉलो करते हो बेसिकली, एंड विच इज रियली रियली स्केरी, 50 सॉर्ट ऑफ 50 आई थिंक क्रेडिट कार्ड, ऑलमोस्ट 50 क्रेडिट कार्ड्स अगर समझ लो आप स्वॉलो करते हैं एक समय, सो दैट इज रियली रियली स्केरी। तो देयर आर ऑप्शंस की किस तरह के आप यूज़ कर सकते हो। वैसे कुछ लोग वुड पसंद करते हैं, बट वुड में क्या होता है कि आपको वुड यूज़ करने के बाद जो चॉपिंग बोर्ड्स होते हैं उसको ऑयल करना होता है, ताकि कुछ पोरस होता है ना, तो मूव होता है और फिर जो जो चीजें आप काटते हो उस पर वो निकलता है, फिर दूसरे फूड में अब्सॉर्ब होता है. तो मेक श्योर क्या कर सकते हैं आप, मेक श्योर कर सकते हैं दोस्तों कि आपके जो मीट कटिंग वुड है वो डिफरेंट हो, आपका वेजिटेबल कटिंग वो डिफरेंट हो. नाउ आई एम थिंकिंग समटाइम्स कि इसे पढ़ने के बाद मैं सोच रही थी कि पहले के टाइम पर अब व्हेन यू लुक एट योर ग्रैंड मम्स एंड आजी को देखते हो, वो तो ऐसे ही काट लेते टमाटर या कुछ भी ऐसे ही हाथ में रख कर काट देती थी. आई नो. एंड अभी अभी जब जब हम बड़े होते हैं तो हम सीखते हैं कि चॉपिंग बोर्ड लाओ, यू नो, चॉपिंग बोर्ड पर काटना है. एंड देन उसके साथ कितनी सारे और प्रॉब्लम्स, यू नो, इतनी सारी प्रॉब्लम्स लेकर आती है. एंड दोस्तों इस आर्टिकल को अच्छी तरह से पढ़कर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे नाउ, लेकिन ये क्वेश्चन आपके दिमाग में ज़रूर डालेंगे कि कौन सा चीज़ है जो हमें यूज़ करना चाहिए कि जो हमें बेटर या सेफा, यू नो, हमारे प्रैक्टिसेस को सेफा करे. आई नो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन क्लीन योर वुड एंड एवरीथिंग, बट देन क्लीन करने के बाद वुड को ऑयल भी तो करना पड़ता है तो कि ताकि एनवायरनमेंट का जो डर्ट है वो ऑब्जर्व करके ना बैठा रहे, क्योंकि आप फिर जाकर यूज करोगे एंड ऑब्वियसली यू गोना वॉश इट, बट स्टिल इट्स ऑयल इन दैन, इट्स आई डोंट नो. सो ये आई विल बी डिस्कसिंग दिस, आई बी टॉकिंग अबाउट दिस अगेन इन अ वेरी प्रॉपर वे. बट ये जो आधा ज्ञान अभी आपके साथ मैंने शेयर किया है दोस्तों, डोंट माइंड, लेकिन आई विल बी लीविंग अ क्वेश्चन इन योर हेड दो कि कौन सा चॉपिंग बोर्ड हमें यूज करना चाहिए ताकि हम सेफ रहे. एंड चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं.

वेलकम बैक दोस्तों. नाउ आई हैव दिस सॉन्ग हियर जो मेरी बेटी ने मुझे दिया और उसने कहा कि मॉम लिसन टू दिस. उसको अचानक से ये गीत मिला और उसने कहा कि यू नो जब घर पर कोई एक ऐसा कॉल आता है एंड यू फील कि ये स्कैमर्स का कॉल है एंड आप नंबर देखते हैं, आप उठाना नहीं चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई आपको कोक्स कर रहा है कि अपने डिटेल्स आप उसको दो और एंड देन आफ्टर सम टाइम आप फ़ोन उठाना नहीं चाहते, राइट? एंड तो ये विद दिस स्टोरी शी सेड यू मस्ट प्ले दिस सॉन्ग बिकॉज दिस इज सच अ मैचिंग सॉन्ग. ये स्कैमर्स के लिए है जो बेचारे लोगों को स्कैम करना चाहते हैं और उनसे पैसा लूटना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन लूटना चाहते हैं एंड देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपनिंग आउट देयर. लेकिन दिस आई थिंक इज अ सॉन्ग दैट बड़े अच्छी तरह से फिट होता है एंड पहले सुना था एंड काफी दिनों बाद इस गीत को सुना है. सो लेट्स

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhvi from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
10: वेलकम बैक दोस्तों. 3 मिनट हो गए हैं 8:00 और 1 घंटे का सफर बाकी है. हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं, स्वागत कर लेते हैं आपका. चलिए आगे बढ़ते हैं.

वेलकम बैक दोस्तों, और ट्रैफिक अपडेट देते हैं। लेटविच रोड विंसा में यहाँ पर मल्टी व्हीकल क्रैश हुआ है। वन लेन इज ब्लॉक साउथ बाउंड टुवर्ड्स हर्स्टन, और दैट्स द वन ट्रैफिक अपडेट अभी के लिए। और दोस्तों, रास्ते पर है, ज़रूर अपना ध्यान रखें, क्योंकि सिंस फ्राइडे है और बट स्कूल भी है एंड सभी लोग बहुत बहुत रश में रहते हैं आजकल। यू फील कि सभी को बहुत गुस्सा भी आता है रास्ते पर, यू नो, एंड गुस्सा में ड्राइविंग करना अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन दे आर पीपल बहुत बहुत एंग्री हो जाते हैं रास्ते पर। तो संभल कर चलाएं और ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें। और फिर बारिश भी रहती है तो ज़्यादा कैओस रहता है रास्ते पर, तो बेहद ख्याल रखें। और रास्ते पर ही आप बेसिकली ऑन द रोड रहते हैं, आप अगर ऐसा जॉब है आपका, तो तब तो आपको और भी ख्याल रखना चाहिए। तो आजकल ऐसा हो गया कि काम पे नहीं, जंग पर जा रहे हैं लोग। आई नो, राइट, ऐसा सिचुएशन हो गया है। लेकिन एनीवे, जो भी कर रहे हैं दोस्तों, आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरे। बी सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और अगर आप वेदर आपको डाउन करता है, स्पेशली विंटर में ऐसा होता है दोस्तों कि कुछ लोग बहुत डाउन फील करने लगते हैं। इट्स वेदर के कारण ऐसा होता है विंटर में। जब विंटर लगता है तो बिकॉज ड्रीरी रहता है और जल्दी से रात हो जाती है, डार्क हो जाता है ऑफकोर्स। एंड सनी टाइम जब समर रहता है या फिर स्प्रिंग के टाइम होता है, तो आहिस्ते आहिस्ते डार्कनेस आती है। वेदर के कारण और के कारण भी लोगों को ऐसा डिप्रेशन या डाउन फीलिंग होता है दोस्तों। सो जो ब्लूज होते हैं, विंटर ब्लूज, एंड किस तरह से आप इसको यू नो ओवरकम कर सकते हैं, तो मेक श्योर यू हैविंग आई फील। अगर आप अकेले रहते हो तो आप क्या करोगे, यू नो। सो अगर आप यू नो यू लिव अलोन, आपको ऐसा सिचुएशन होता है कि जहाँ पर आप विंटर आपको डाउन करता है, आपका मूड ही डाउन रहता है, नथिंग गेट्स इट यू नो गोइंग, सो मेक श्योर यू हैव अ गुड वॉक। अगर आपको चांस मिलता है तो आफ्टरनून में आप वॉक जाएं। सो यू आर कीपिंग योरसेल्फ बिजी। और फिर इससे क्या होता है, जो हैप्पी हार्मोन्स है वो रहते हैं, यू नो, व्हेन यू आर वॉकिंग यू हैव फ्रेश एयर ऑन योर फेस। और फिर मेक श्योर यू हैव कैंडल्स एज वेल। लाइट तो होता ही, कैंडल का एक अलग इल्यूमिनेशन होता है, एक ग्लो रहता है, यू नो, एंड इट ब्रिंग्स पीस इन योर हार्ट। और तो क्या है कि यू नो सॉरी दोस्तों, और कैंडल्स होते हैं, म्यूजिक होता है, और ऐसे ही आप न्यूज़ देखते रहते हो हमेशा, तो और भी आपको डाउन, क्योंकि न्यूज़ में अनफॉर्चुनेटली अच्छी न्यूज़ें, जो न्यूज़ होते हैं वो बस फनी न्यूज़ है, इंग्लिश में इंडियन तड़का। अनफॉर्चुनेटली सॉरी, आई थिंक आई एम ऑल्सो हैविंग अ क्रोकी थ्रोट कमिंग अप। एनीवे, तो हाँ, सो ऐसे जो न्यूज़ होते हैं जो आपको अपसेट करती है और पहले से आपका जो मूड डाउन रहता है, तो ये बड़ा अच्छा मिक्सचर होता है आपको बहुत ही डाउन करने के लिए। तो दोस्तों, हैव सम म्यूजिक गोइंग ऑन, हैव द कैंडल्स गोइंग ऑन, मेक योरसेल्फ अ नाइस यू नो नाइस फूड और समथिंग एंड एन्जॉय दैट could possibly bring your mood up, or talking to your friend even. But evening mein apne aap ko bas ghar ke bhitar rakhna is gonna just make it worse. So make sure you are exercising as you're going for walks and stuff. So ye aapko ready karta hai evening ko. Agar especially agar aap akele rehte hain, तो आपको रेडी करता है। आप घर में अंदर चले, अभी आप स्ट्रीट में 5:30 बज गया है, अगर 6, यू नो एवरीवन इज इनसाइड इंडोर्स एंड एवरीथिंग इज लाइक ओके क्लोज्ड, सो ये अच्छा नहीं है। एंड सो लिटिल थिंग्स दैट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ, जो आपको अपलिफ्ट करे आपका जो मूड है। एंड ये चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत ला।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: वेलकम बैक दोस्तों। और हमारे पास एक्चुअली मैं देख रही थी कि

इमरजेंसी सिचुएशन कभी ऐसा होता है, अगर अभी विंटर के कारण समझ लो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो नहीं है, तो आप किस तरह से अपने आप को वार्म करोगे? या फिर आप कैंपिंग जा रहे हो और वहाँ पर किस तरह से कुछ लोग पसंद करते हैं कि दिस टाइम कैंपिंग पर जाते हैं, तो आपको नीडेड है एक समझ लो 4 या 2, इट टोटली डिपेंड्स कि कितना बड़ा है आपका क्लैपॉट। आप क्लैपॉट लें और 2 या 4 आप ब्रिक्स लें और कपल ऑफ कैंडल्स लें, एटलीस्ट 3 कैंडल्स। तो फिर क्या होता है, जो ब्रिक को रखे नीचे और उसके ऊपर जो क्लैपॉट है उसको उल्टा कर जो होलो एंड वो नीचे रहेगा, तो ब्रिक पर अच्छी तरह से ऐसे धर दें और फिर नीचे आप कैंडल्स बारें। कैंडल्स क्या करता है कि बारने से, बिकॉज क्ले हीट अब्जॉर्ब करता है और रेडिएट करता है और ब्रिक करता है स्टेबलाइज करता है जो क्लैपॉट है और एलिवेट करता है एयर फ्लो और ये स्टेडी जेंटल रूम वार्मिंग इफेक्ट देता है। तो ये बैक ऑफ अ माइंड हमेशा रखे कि क्लैपॉट तो ऐसे ही मिल जाता है, कैंडल्स तो घर पर रहते ही हैं और ईट तो कहीं भी हम स्टॉक रखते ही हैं। तो कभी ऐसा सिचुएशन आया जहाँ पर आपको नीडेड है कि आप वार्म रखे अपने आप को, तो ये बड़ा इजी वाला सिचुएशन है, आप सेट कर सकते हैं अपने घर पर और यूज़ करते हैं, या फिर कैंपिंग जाते हो वहाँ पर भी यूज़ करते हो। बहुत बड़ा स्मार्ट है एक्चुअली, आई थिंक इज़ वेरी स्मार्ट। एंड ये ना, ऐसी बात पर मुझे एक इंसिडेंट याद आया, जब मैं नर्सिंग कर रही थी फर्स्ट ईयर में अपने थी, तो वहाँ पर कुछ नर्स से मुलाकात हुई, फ्रेंड्स भी बन गए। एंड तो वो अपना स्टोरीज बता रही थी कि जब वो आइलैंड में एज अ नर्स, जब वहाँ पर दोनों फ्रेंड्स थी, एक्चुअली लकली दोनों ही आइलैंड में काम कर रही थी, मुझे याद नहीं है कौन से आइलैंड में, लेकिन एंड देन दे हैड अ डिलीवरी, बेबी वॉज बॉर्न, और वहाँ पर ऑब्वियसली बेबी को वार्म करने के लिए था नहीं, बट कुछ हुआ था उस दिन एंड they needed to keep the baby warm and everything, so they wrapped the baby in the foil, like blanket karke fir foil karke, and they kept it close to them and near a fireplace, and so they could keep the baby warm, because uska baby ka warma tha wo nahi chal raha tha, so that was how they could do it, and it was such an amazing story. And especially, just imagine weather is bad and there's no electricity, and you have to use your dimag ki kis tarah se ek baby ko aap safe rakh sakte hain, and this is what they came up with, and I think it was such an inspirational story. And you know how जब आप पहले पहले किसी प्रोफेशन में जाते हो, देन यू लिसन टू ऑल दिस स्टोरीज एंड दे मेक यू वाओ, एंड दे मेक यू थिंक कि वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग दे कुड कम अप विथ, एंड कितना अच्छा लगता है। एंड आई एम श्योर आप जो भी आप प्रोफेशन में हैं, आपका भी कुछ ना कुछ तो एक इंसिडेंट आपके दिमाग में रहा होगा कि हे दिस इज व्हाट दे डिड, एंड ऐसा हुआ था, ऐसा इसने किया था, ऐसा हम भी दिमाग में रखते हैं कि ऐसा कुछ कर सकते हैं इफ कोई सिचुएशन अराइज हुआ, राइट? सो एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल जो भी आप कर रहे हैं दोस्तों। सो आई एम श्योर दिस इज गोना बी विद मी टिल द डे आई डाई, दिस इज सम स्टोरीज दैट ऑलवेज स्टे विद यू। दो इसमें मैं नहीं थी, लेकिन इसे मैंने सुना था, एंड इट्स टू बी अ पार्ट ऑफ इट, एंड इवन आई थिंक आप सुनते हो कोई चीज, इट्स लाइक जॉइनिंग इन एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ इट। सो या, सो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत हमने लाया है, लेट मी फाइंड

दोस्तों बहुत ही खुसरा सा गीत आप सुन रहे थे और आगे बढ़ते हैं। वैसे कहते हैं कि जो समय है, सेहत है, दोस्त है और व्यवहार है, ऐसे जो कीमती निवेश है जो उम्र बढ़ने के साथ और अधिक मूल्यवान हो जाते हैं। तो दिस इज सो ट्रू कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे एज जब बढ़ता है, तो वैसे ये तो कहते हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर, बट हाँ, इस नंबर के साथ साथ जो हमारे दोस्त है, हमारे सेहत है, हमारा जो हेल्थ है और जो टाइम है और जिस तरह से हम बिहेव करते हैं, ये सब बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और इस पर हमें ध्यान देने की बहुत ज़रूरत हो जाती है दोस्तों। तो टेक अपने आप को बहुत ही अच्छी तरह से आप देखें और एज वी ग्रो ओल्डर इन चीज़ों पर बहुत ध्यान दें। और जो समय है, स्पेशली द मेन थिंग आई गेस इज आपका जो सेहत है, आपका हेल्थ है, इस पर ढेर ध्यान दें, क्योंकि जो टाइम होता है जब अच्छे रहते हैं आप तो सभी लोग रहते हैं, जब बीमार रहते हैं तो आप अकेले ही रहते हैं, यू नो। सो दिस इज़ लाइफ्स हार्ड ट्रूथ एंड ये हमेशा रहेगा, इट्स ऑलवेज गोना स्टैंड देयर कि आप रोते हैं, आप अकेले रोते हैं, जब आप हैप्पी रहते हैं, सभी के साथ हैप्पी रहते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा इंसान रहता है जो आपके रोने पर भी आपके साथ रहता है। सो आई नो दिस इज़ वेरी हार्ड एंड बट ये ट्रूथ है। एंड तो उसी तरह से सेहत जो हमारा होता है, जब बीमार रहते हैं, आप अकेले ही रहते हैं, तो ज़रूरी है कि आप अपना सेहत का ख्याल रखें। एंड और हमारे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं और भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि दोज आर द वंस हु हैव गोन थ्रू योर अप्स एंड डाउन्स, हु हैव, जैसे कि अभी हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं जो 16 ईयर पर जो हमारे फ्रेंड्स थे एंड 25 ईयर्स पर अगर जो वो आपके साथ है, सो आप वो 16 ईयर वाला पर्सन नहीं है, 25 ईयर यू हैव ग्रोन एंड यू हैव बीन इनटू अ डिफरेंट पर्सन एंड आप एज वाइज वर्सा एज वेल। सो चेंजेस भी आपने अडॉप्ट किया है, लेकिन मे बी एट अ 60 पर या 70 पर यही दोस्त अगर आपके साथ है, दे आर द ट्रू जेम्स ऑफ योर लाइफ, सो उन्हें संभाल कर रखिएगा। सो ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। एंड ऑब्वियसली आप तो जानते हैं टाइम तो इम्पोर्टेंट है ही, सो ऑल दीज थिंग्स ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं।

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: दोस्तों आपको बता दें कि नेक्स्ट फ्राइडे
2: एंड्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू
1: नेक्स्ट फ्राइडे से हम नहीं रहेंगे टिल 7th of August को आपको मिलेंगे। तो ये जस्ट बी अवे फ्रॉम द कंट्री, सो गोइंग अवे एंड सो ये आई स्टिल हैव टू टेल जतीश अंकल, सो लेकिन पहले अभी से बता दे क्योंकि शायद लेटर ऑन भूल जाए। लेकिन दोस्तों लाइफ गोज ऑन, और चलिए आगे बढ़ते हैं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हूं। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Tanvire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: दोस्तों, अब तो जाने का वक्त हो गया है और आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। बहुत मजा आया और आशा है कि आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे आपके लिए। हैव अ लवली डे, ब्यूटिफुल वीकेंड, और मिलते हैं अगस्त 1st वीक में। टिल देन ख्याल रखिएगा। नमस्कार।

है रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701, 3279-1701।

और इन यादों को ताजा करने के लिए मैं आपका साथ देता हूँ हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक स्टेशन रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर। आपके साथी फिरोज खान संगीत की जानकार हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक 79 ब्रिस्बेन पर।

0: दिलों को झंकृत करे,
1: हवाओं में फिजाओं में दिलकश संगीत से रंग बिखेरे।
2: और अभी से लेकर 10 बजे तक रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर आपके साथ फिरोज खान। आज का दिन शुक्रवार का दिन आप सबके लिए शुभ हो। और आज जुमा है और आप सब सुनने वालों को जुमा मुबारक। आप सबको हमारा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और शुरुआत कर रहे हैं हमारा रेगुलर सेगमेंट आज जुमा है।
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم
4: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर आपके साथ फिरोज खान। मैं आपको याद दिला दूं कि हर रविवार के सुबह 7 से लेकर 8 बजे तक आपके लिए हम पेश करते हैं हमारा साप्ताहिक इस्लामिक प्रोग्राम, जिसमें आप सुन सकते हैं सवाल और जवाब हजरत मौलाना फजल दाद के साथ। और हर जुमे के दिन फ्राइडेज को आपके लिए 9 से लेकर 9:30 बजे तक महरूम हजरत मौलाना बशीर अहमद दीवान के साथ आप सुनते हैं जुमा बयान। और फिर 9:30 से लेकर 10 बजे तक आपकी खिदमत में ओल्ड विंटेज कवाली, हमारी पर्सनल प्लेलिस्ट से निकाली हुई चुने हुए ओल्ड विंटेज कवाली।

अभी आप सुन रहे थे कुछ चुने हुए मजहबी कवालियाँ, ऑल विंटेज कवालियाँ हमारे प्लेलिस्ट से निकाली हुई। हर जुमे के दिन शुक्रवार को हम आपके लिए पेश करते हैं हमारा विशेष प्रोग्राम। आज जुमा है, 9 से लेकर 10 बजे तक आप सुनते हैं महरूम बशीर अहमद दीवान से जुमा बयान, और उसके बाद हम करीबन 9:30 से लेकर 10 बजे तक आपकी खिदमत में पेश करते हैं चुने हुए मजहबी कवालियाँ, ऑल विंटेज कवालियाँ। अगर एक बार तक के लिए आपके साथी फिरोज खान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।

और इन यादों को ताजा करने के लिए मैं आपका साथ देता हूं हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक स्टेशन रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर। आप